ना मेदाल दे ले को दे तूत कर दे ले बा वो के पिए करे कि चाला दितवा नहीं सकता पिए करे कभी तो कुमो एक बार पत्नी भी बड़ी लिमन हवन सन वैसन को दिल खोल के बोलिया अरे पति

0: हई करे की बस की शादी में किन ले वंशन उ हई लुतुआ तब दोनों के बनेला में हो जिस तक लैसे जमीन नियर नहीं हो जहां नु तेरु वहां यहां तो ओकर नामे बा हां सकी
1: बिदे जेकर नाम हां जेकर नाम में बा
0: प्रोपिएटे हो तो यहां देखबो पतिया तो कुछ नहीं सकी बोले हां मेम की कुमा जे मैं सिरमा नॉर्मल मा का करे कब बेचे लंसन ऐसन काम एक शादी कर ले वंशन उ एगो किन ले वंशन ने बोलो तो आधा-आधा पैसा बांटे लंसन अपन में बोले बोलो तो आप बेच लेना अले कोरे हम ये तक किन ले रहे हम ही तो के दे रहे पैसा तो ना में रहल तो ईमानी ते हमें सोच के उ बेच जाए मैं यहाँ लीगल में कब देख बोलो तो ओकर नाम एंतिया में तब ओकर सिबो सो मदमुआ के तो मदमुआ तब बेच देलक हाँ के चांद पैसा दे के अब ओके नहीं दे ता ये एगो दूसर है
1: दूसर एगो केस चल चला हाँ बिल्कुल। और आज जब हम बात करते हैं लीगल एडवाइस पर और आज डिवोर्स में होने वाले बंटवारे पर बात कर रहे हैं जी, अगर आपके मन में भी कोई भी ऐसा सवाल है जो किसी भी लीगल इशू को लगकर है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑन 402-8085 पर। जी हाँ 402-8085 पर इस वक्त हमारे साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका बनी हुई है, तो ज़रूर आप संपर्क करें और कोई भी ऐसा सवाल है जो कानून को लगकर है तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। आज हमारे साथ बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो जायदाद

0: आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं और बिल्कुल इस वक्त हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कोई सवाल है जो आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पहले श्रोता से बात करते हैं। हेलो हेलो, जी हाँ, उनका कॉल कट गया है। जी हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं 4028085 नंबर है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, आप हमारे साथ कॉल के माध्यम से अपने सवाल को रख सकते हैं। और चलिए, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह से डाइवोर्स के बाद किस तरह से बंटवारा होता है, तो यहाँ पर हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर पति पत्नी कोनो बिजनेस करता एगो लौते फ्रीज हवन से, तो कैसे एगो मान ला एगो दुकान खुलले हवन, एगो लाबुची खुलले हवन, काम करत हवन दोनों पति पत्नी, एवेसी करले हवन पैसवा, तो हाई में कैसे बंटवारा होला?
1: हम देखत नहीं पूछते और काल के लिमन से करले हुआ वहाँ जो जो चीज पोता है वही पूछत हुआ। ये कुछ चीज है आज मॉडर्न खैला भी है। पहले तो देखब कुमा जे माँ बाप कुमा जे एगो बिजनेस में नहीं रखल या के दूसर के आदमी से काम करे। मैं अभी के जो जेनेस बा जैसे हमने बोली ला सर नया नया शादी कर ले सन पति पत्नी बैठ के कुछ अरे कहाँ भी दूसर के है काम करे, काहे ना अपने एगो बिजनेस करब सर, काहे ना अपने एगो आंथे फ्रीज करब सर। अभी कहते देखब एक बान है आदमी बा एगो बुटीक खोले हुए सन पति पत्नी संगे हुए सन या एगो मगाजे खोले हुए सन दोनों संगे या कोनो दूसर एगो बिजनेस
0: एगो स्नैक खोले
1: हुए सन। हां, एगो खूब जरूरी चीज है। हां, शादी के जाई के जाना खाई के दिमाग के वो जाने ला कि उतना पैसा मिलेला उमें, तो बोले सन कोरेक शुरू करब सर ऐसे एगो बिजनेस। ई एगो आंथे फ्रीज जब एगो पति पत्नी शादी में कब एगो एंटरप्राइज कर ले वनसन बनाइले वनसन या किन ले वनसन या गोइंग कंसर्न हो चलता उ कुमाजे है बिजनेस हुआ शादी में कब उ बिजनेस हुआ के कुमाजे है बैलेंसन दोनों कुमाजे है बा दोनों रिस्पॉन्सिबल बा उ है के अली शुरू के सके तो वहाँ से न को में तो उहे के उ लोग के चलल के लिए कुमाजे गोइंग करे के तो उ लोग के चाहे ला जे किन ले वनसन शादी के आगे तो उ चीजवा रही जो अदमिया के रखल। बस एक बान के रही शादी कर लग तो उकर पति मजे आगे तो उरुले करे उ है बिजनेस वाकस तो हुआ अब उ कब शादी कर लग तो उ में अभी कुछ में देवा था मैं शादी के गाड़ी जे ई एगो बिजनेस कर ले हुई पतिया तो उ बिजनेस हुआ उकरे रही उही रिस्पॉन्सिबल पर्सनल जो जो देत ले ले हो या कुछ कर ले हो बस ये उकर नमूए में रही शादी करे के आगे। एकरे नाम है बियां प्रोप उकर जमीन उकर है। मैं ये आवेला एक बान आदमी एगो एंटरप्राइज खोले ला तब कुमा जे कब शादी कर ले ले बा कब शादी कर ले ले बा उ कुमा जे दोनों तो देख बा दोनों रिस्पॉन्सिबल बा उकर चलाई के उकर देत जी हुई तो पे ये करे के दोनों संगे। मैं एगो चीज है आज के जमाना में देखब माँ बाप का करेला कब काम करेला तो बोले अरे हमारे एगो लड़का बा जैसे ई एगो बिजनेस हुआ बोले बेटी शादी कर ले अभी तो नहीं कर ले हुए आओ हम हमारे एगो बिजनेस बा तो हमने के जो बाय गो गुस्त हुआ चल हम तुके दे दे अब हम तोर नाम दे दे। एक बान हुए ला माँ बाप देवेला उकर लड़का के शादी करे के आगे तो वो बिजनेस हुआ के जो बागिस्त हुआ वो के शादी करे के आगे उकर बाप या माँ दे दे ले बा एगो दोनाशों के टाइम में तो देख बा वो बिजनेस हुआ उकरे रहेला पस ओकर
0: माँ के दोनाशों। रघुनंदन जी हाई जाप पर इशारा हुआ था एगो श्रोता हवन सुनीला जा उनकरा। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते। हाँ जी,
2: हाँ हाँ भाई, ओके नमस्ते।
1: तन नमस्ते, तन जोर से बोल के कुमाजे।
0: हाँ हाँ
2: हाँ, हमर हमर बुरा देसी देवलवान

0: जी में ये अभी जमीन की बात नहीं बोलते हैं सर खाली परमिशन दे होता तो एगो आकात कैसे वो कात पापिये नियर लेके अपन नाम डाल दे सब उनको कति दे चीते कौन कौन चीज सब दिखाई दे कि वो देवता वो आदमीया जो ओकर नाम अभी ओके जाने के चाहला कि देख हम देवता है तो के ई परमिशन है एगो खड़ा रही एगो पुक्सी के हम पास की हम हमर बगल से हमने सकबाई से
1: कौन प्रोसीजर करे के है जैसे अगर एगो पुक्सी के
0: नहीं नहीं ई में ही नहीं पुक्सी कब हुएला कुमार जमीन उनके विषय में तब नोटेर मांगेला हुआ के चाहेला अंग्रेज उ सब करे के वो नहीं देख यहाँ छाके जहाँ हुआ एगो आप वो के देखे के यहाँ तक खाली बेचे के वो सिर्फ जाफे लॉय में तो यहाँ वाकत में लिख दे सब परमिशन डाल दे उनका नाम दे दे लोटवा के सब उनका कंडीशन करने में वो देता है बोली तू खड़ा रहिए हमर बगल से तो ये उनका पोक्सी आ रही तो हुआ जाए तो कर एक बार
1: अच्छा
0: एगो साहब के बोले चाहे एगो आकात में लिख के एगो खाली एगो चिट्ठी नियर लिख के दे के ओके बोले के कि बेचे के कुमा जाए घर हुआ
1: तो चला है जा पर एगो और श्रोता हवन सुनी ला जा उनकरा
0: एक मिनट
2: हेलो
1: हाँ
2: हेलो
1: हेलो
2: ओ नमस्ते
0: नमस्ते जी
2: वी हेलो हेलो
0: हाँ बोला
2: वी मैं कहाँ कुछ है
0: हाँ
2: Oui, ma belle, moi tu fais côté de marié là.
0: Oui.
2: Ce bébé là, un dessert avec l'hiver 3. Mais, j'avais pas autant ça terrain là, mais pas réussi à faire. Mais, belle là, j'avais besoin d'une banane l'argent pour se gagner ça terrain là. J'avais pas autant ça. C'est un gros, je peux faire ça, combien de bananes? Là, moi, tu fais une maillée, non, allez, là, c'est un coup de là, moi, tu fais, bébé, moi, tu fais, prends l'aune pour portage. Ça veut dire, pour payer ce banser. Mais est-ce qu'il, moi, tu fais capable de faire ça? Oui, pour le faire, il est capable de faire, prendre l'aune. Qui garantit, non, ça, là, t'es là, pour une poulie?
0: नहीं पहला चीज है हमने के जो हम समझ ली है तीन गो आदमी बा अब तीन गो आदमी बे वो बस का करते हो उनसन उस जमीन हुआ उ लोग के तीनों के नमो में बा तो तीनों के आदमिया के नमो में रही तो कुमा जब मुश्किल हो पताजे करे के बस की ए वो जमीन कब से बुझो तीन है तीन अपों बा एक एक अपों बा के सकल नहीं पताजे करे के मैं उस जमीन हुआ मैं छोटा रही मुझे कम रही तीन आदमी से नहीं सकल दाई पताजे करे तो हिया चाहेला लिसिटेशन करे के बेचे के मैं हिया ए गोवा के मन बाकी ने के जैसे माता जी बोलक उकर बेटिया के वो बेटिया के एतिगे से बा लेके हाँ मैं करते हिया भी प्रोसीजर नहीं होल बा कि किने के कैसे करी सके वो एगो बोली के ओकर यहाँ पैसा न हुई तो लाभांश से लेके एगो दे लाभांश से नई सिर दे

पसी का है लाभांक के चाहे ला जमीनवा जे ओकर नाम में रह तो ये लोन देत ना हिया काले को बोली के गोली पोते के लेवता एगो जमीन में जो नमी जमीन हुए नहीं बा ओकर नाम में तो देवे कोनो लाभांक दे कोनो नहीं दे मैं तीन कार नहीं दे मैं हिया के मुश्किल हो मैं ओके मन होई जे उकमा जे कोंजिशो करे सके जगे गो नोती रिया गो पापिए करे के ऊ जे भरी देतवा तो ओकर बेटिया के हौ दू

0: पांच पर तू हमने के टेलीफोन करे सकबा कार्यक्रम जारी बाते और जैसे लौं थे प्लीज के बात करत रली और आज कार्यक्रम में पोताज के विषय पर बात करत है त आगे बढ़ब स हां रघुनंदन जी
1: हां त जैसे बोली सने गो अंते प्लीज होई तब अबो के मन होई कुमा जे जे ओकर मां बाप दिले होई ओके कैसे कुछ तो वहां देखत है सर
0: हां
1: गाड़ी त ओ करे रही है के ओकर पति के से बोझो होई कुछ नहीं मिली एक मिसलमा आ डोनेशन के बोले लिसा एगो हेरिटेज के होई और मां बाप कभी तो मर जाला तो ऑटोमेटिक एगो सक्सेशन ओ खुल जाला तो सक्सेशन में ओके मिली तो वो करे रही पति ने से कुछ करी
0: हां
1: मैं यहां देख लो जब ओ जी बिया वहां ओ उपमा ओ एगो जी बिया प्रॉप हो जाला तब ओ करे ना वहां में कब्रेला मिसलमा ओ औसने को जी बिया नई पोताज होवेला तो ओ रेस्टोरेंट जोन रहेला ओकर मां बाप दे दिल हो या घड़िए से या अपने किन ले होई तो ओ कर रही नहीं सकबा कुछ कर
0: चला एगो और श्रोता हवन सुनीला जाउन करा हेलो
2: हेलो रत्ना जी नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत बा
2: कपिल भाई के बोले नमस्ते बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में देवलानी के लिए
1: नमस्ते भैया
2: अभी हम काम में है सब संग चल हमरा थोड़ा सुना था मैं एगो समस्या बगर बड़ा प्रॉब्लम बगर बेटा संगे
1: बोले
2: ओकर शादी हो दू बरी शादी हो गल तब दू बरी शादी हो तब जोन किनलन से अपन घर किनलन से लोन लेके
1: सदिया में है सदिया में
2: हां दू बरी शादी में जब लोन लेके घर किनलन से तब जीवोस प्रॉब्लम हो जीवोस हो गल अब जीवोस हो गल था अब पचा लोनवा भरे के अब अकेले ओकर बेटा अकेले लोनवा भरत था तीन बरी सो गल अब जीवोस खोता तब अब मदमा को सोम दिखलाए कहता पैसा दी तब सिए करी तो
1: हाँ, कैसे नहीं है मेर्सी बहुत एगो चीज हाँ। रत्ना जी से भैया बोलन इस सच जाने ला एगो जमीन खिलने रलन सन सुपोजो दोनों में
0: हाँ।
1: दोनों के नाम में हुई जब कुमा जाए एगो जीवोस हो चाहे ला दोनों के भरे के कब जीवोस के बाद अब एगो बोली के वो बोला था वो जमीनवा में ओके हई मांग करता नहीं कैसे ओके मदमुआ के मिली कुछ यहाँ शादी में तो किनले दोनों तो रिस्पॉन्सिब है वो लोनवा भरे के तो नहीं कि कुमा जे अब मिशे हुए भर ले जाए और यहाँ कुमा जे मदमुआ नहीं मैं एगो चीज सकी करे एगो चीज से करी मिशवा के बोलती से हम सब ओके मन हुई भरे के तो सब पापी जुन बा ओके चाहे ला करे मजे रमासे के देंगे से बुझो 10,000 धारेला ऊ है मैं घरवा में या बनाई के तो ओकर 10,000 की जे घर पापी रही काल मदमो के कुछ नहीं मिली मैम की को के ओकर दुआ बा पर से बोली हां है का जमीन डूबत रहल हम निकल ले हई है का हम न पैसवा पे ये कर ली ला बैंकवा से लेके पपीवा से बताई तो मदमवा सोचले रलरी नहीं उभरी हम के मजे मिली नहीं कुछ नहीं मिली ओके
0: ये आज के कार्यक्रम बिल्कुल लगभग लगभग समाप्ति तक चलहाल हई है अंतिम एगो सवाल पूछब रघुनंदन जी से मान ला रघुनंदन जी जीवोस जीवोसवा हुआ था औरी पति पत्नी अपन को सौतमो से मान ला लाकूर में जाके नहीं पर अपन को सौतमो से अपन आप में म्यूचुअल करके एगो पोताज करे खोजियन सा तक खोजे सा वो करे सकी मतलब जी है जितना जी भी है बा अपन अपन म्यूचुअल कंसेंट से
1: सबसे जोली चीज बोल रहा है ही हम बोली ला पति पत्नी शादी कर ले बा पति पत्नी इतना बरिसन से रहल बा वो जोन प्यार रहला वो पति पत्निया में ई दुनिया में कोई ही से नहीं है मैं अब एगो बोली के ओके मन बकुमा जे अगड़िए जाए के लाकूर में लड़ाई करे के हे ने वकील के लेके हो लेके अरे जा कुमा जे नोतेर में बोले ली तलो ना सब एगो कुमा जब एगो शादी करब बस वहां जाके नोतेर के आगा कुमाजे सब को पापी बोले वो एक नाम एगो अरेंजमेंट अमिकाल दोनों डाको हो सन हाँ यहाँ डाल दे बोली तू हम ले घरवा हो घरवा जैसे बोले ले सब चीज डाको में कितना जोली है सब अपन अपन चीज हुआ अब हुआ जाए जीवोसवा के कुमा हुई तो फाइले करी कि तेल तो ओके उमलोक करी जीजुआ कि देखा जोन जोन देसी दे कर ले सन ये बोलता ऊ घरवा रही होकर ई घरवा ओकर हुई तो कोरे ऐसे करके पोताज हुई एगो पोताज अमियाब सबसे जोली चीज है बस पोताज में तो हमेशा प्रॉब्लम होती रही
0: हाँ तो चला आज की चर्चा कार्यक्रम के समाप्त करे के समय हो गल बा हाइजा पर हमनी के साथ दिलन दीपशिका हमर प्रोडक्शन असिस्टेंट तकनीक पर हमनी के साथ दिलन कादे भाई और साथ रहल रितेश मोहाबिया हमनी के प्रोड्यूसर और बिल्कुल एक बार फिर चलते चलते आपको याद दिला देते हैं कि यही कार्यक्रम दोबारा से आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन के लहरों पर और हमारे साथ साथ जुड़े बैरिस्टर कपिल देव रघुनंदन जी उनकरा बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा। जितना कोई श्रोता लोगन है कार्यक्रम में भाग लेलन उनकरा धन्यवाद बोलब जा। जितना कोई हमनी के ऐसे रेडियो पर हमनी के सुनलन और तोहरा मन बा कपिल देव जी से संपर्क करे के त जरूर तू संपर्क करे सकब और ई कोनो समस्या रही त जरूर कानून के विषय में

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें याचना से आपको नमस्कार
1: नमस्कार परी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार आज सुबह बोटानिकल बाग में कई लोगों ने राष्ट्र के पिता कहलाने वाले सस्यु सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की उनके बेटे डॉक्टर नवीन राम गुलाम बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर और लेबर पार्टी के कई सदस्यों की उपस्थिति में उनकी समाधि के पास प्रार्थनाएं की गई एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करने वाले को फूलों के साथ नमन किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्यु सागर राम गुलाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गुणों और असूलों को अपनी ताकत बनाकर मौर्य समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया मॉरिशस के इतिहास की एक प्रभावशाली शख्सियत सस्यु सागर राम गुलाम ने न केवल अपने सरकारी कार्यों से बल्कि अपनी गहरी बौद्धिक और सामाजिक सोच से भी अपने युग पर अमिट छाप छोड़ी है उनकी 126वीं जयंती के अवसर पर एक ऐसे राजनेता का चित्रण आपको आज शाम देखने को मिलेगा जिनकी कलम उनके लोगों की सेवा में पहला हथियार बनी थी हिंद महासागरीय इलाके में सहयोग मजबूत करने की दिशा में आईओसी और सिगाट के बीच कायम फ्रेमवर्क समझौते को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एबेन में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ये समझौते पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से लागू हैं जिसके तहत इलाकाई स्तर पर कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को काफ़ी

0: बढ़ावा मिला है। विदेश की खबरों में फिलीपींस के एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 की उम्र 14 साल की बताई गई है। 8 लोग घायल हुए हैं जिनमें 4 की हालत गंभीर है। हमलावर 16 साल का था जो मारा गया। ये इस साल फिलीपींस में हुआ ऐसा तीसरा घातक हमला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया दीजिए नमस्कार।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी मिली। आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दोस्तों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, पहुंची हूं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल शाम के 4:11 हो चुके हैं। 18 तारीख है, शुक्रवार का दिन है, सितंबर महीना है, और इसी के साथ इस प्यारे से सफर में आइए जुड़ते हैं, कुछ बातें, कुछ जज्बात आपसे साझा करते हैं। सबसे पहले हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे उन सभी का जो इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं। आप अपने मैसेजेस के द्वारा, अपनी चिट्ठियों के द्वारा, अपने फ़ोन कॉल्स के द्वारा इस कार्यक्रम को और भी चार चांद लगाते हैं। बस अपना प्यार यूं ही बरसाते रहिएगा हमारे साथ, यूं ही दिल से जुड़े रहिएगा, और प्यार भरे खतों के साथ आपके कई बार ऐसी बातें जो आप किसी से नहीं कह पाते, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी बात समाज तक पहुंचे ज़रूर, पर आप नहीं चाहते कि आपका चेहरा

किसी को पता चले. बिल्कुल इम्पोर्टेंट तो वो है ना कि हम अपनी बात रख पाएं, हम अपने दिल का मैसेज दूसरों तक पहुंच पाएं और पहुंचा पाएं. और बिल्कुल कई सारे ऐसे लोग हैं जो बातें तो करना चाहते हैं पर कुछ ऐसी कई बार ऐसा होता है कि कुछ दबाव के कारण या कुछ कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कई ऐसी मजबूरियां आती हैं जहां पर हम अपनी बात रख नहीं पाते. तो चलिए आज हमें एक बहुत ही प्यारा सा खत आया है और ये एक टीचर का खत है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है. आपने जिस तरह से आज इस प्रोग्राम के माध्यम से इस खत को शामिल करने के लिए अब एक पहल की है, थैंक यू कहेंगे आपको. और आप लिखते हैं कि हम बहुत खुश हैं आपके प्रोग्राम को सुनकर. आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो मन की बात दुनिया के सामने रखने का एक अद्भुत प्रस्ताव और एक तरह से देखा जाए तो सबसे बढ़िया बात आप दुनिया की दुनिया ने बिल्कुल आपकी जो बात है आप दुनिया को सुना सकते हैं, बता सकते हैं. आपकी पहचान को बिल्कुल गोपनीय रखते हुए, कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, और इसीलिए आप बेहद प्रसन्न हैं कि आप अपनी बात को इस कार्यक्रम में बिल्कुल दिल खोल कर रख पा रहे हैं. आप लिखते हैं कि मैं एक अध्यापक हूँ और मैं आए दिन बच्चों को पढ़ाने के साथ उनकी मनोस्थिति को समझने का प्रयत्न करता हूँ. आज बहुत से बच्चे, युवा अपना मार्ग भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, दोस्तों के प्रभाव में आकर या फिर कह सकते हैं कि घर में होने वाली अनबन, लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर कई बार ये जो बच्चे हैं अपने मार्ग भटक रहे हैं. बस मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से इनको मैं मदद दे सकूं और इसके पीछे दोष किसका है. अध्यापक होने के नाते मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी भावी पीढ़ी हैं और अगर ये गलत कर रहे हैं तो उनका हाथ छोड़ देने के बजाय उनको समेटिए, उनकी समस्या समझने का प्रयत्न कीजिए. कई बार कुछ बच्चे अपनी समस्या को समझा ही नहीं पाते हैं. अध्यापक होने के नाते हमें कई ऐसे विद्यार्थियों को देखकर हम चाहते हैं कि हम उनकी समस्या को समझकर दूर कर सकें पर कई अभिभावक अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाते. ये उनका मानना है, बच्चों का ये कहना है कि हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते और अगर कह भी दे तो उन्हें जज किया जाता है. अध्यापक होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा तो इसमें नुकसान केवल बच्चों के भविष्य का ही नहीं पर एक माता पिता का भी बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है. क्योंकि जिस बच्चे के जन्म पर आप इतने खुश हुए थे आज उसी बच्चे को गलत रास्ते पर जाते देख आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है. बच्चा अगर आपका है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है. मैं निवेदन करता हूँ हर वो इंसान से जो इस प्रोग्राम को सुन रहा है, हर माता पिता से कृपया करके अपने बच्चों के लिए समय निकाले. उन्हें किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ये समझने के लिए थोड़ा सा वक्त दे, उसकी पीड़ा को समझिए, उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिए. क्योंकि केवल अध्यापक या अध्यापिकाओं का काम नहीं है, यहाँ पर माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने इस चिट्ठी के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की है और मैं समझती हूँ जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं शायद इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे. एंड डेफिनेटली आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम जहाँ पर हम घरेलू बात, कई बार दिल की भावनाएं, कई बार समाज में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो सच में हमें, भले मैं ये नहीं कहती कि हमें इसका एक ठोस सल्यूशन मिल जाता है पर कई बार सोचने पर बिल्कुल हम मजबूर हो जाते हैं कि गलती कहाँ हो रही है.

गलती किसकी हो रही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम खेलने लगे हैं कि हाँ ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, और ऐसा कहकर बस हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पर देखा जाए तो नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। जैसे जैसे इस गुरु जी ने कहा, इस अध्यापक ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये हमारी हमारे देश का भावी भविष्य है, हमारी भावी पीढ़ी है जिनके कंधों पर इस देश का भार पड़ने वाला है, और अगर उनके कंधे ही कमज़ोर होंगे तो वे इस दिन के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे। और जिस प्रकार का सिनेरियो इस समय हमने देखा है समाज में, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि मे बी 11-12 ईयर्स या उससे भी कुछ बड़े बच्चे जो टीनेजर्स टीन से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ये एक बहुत ही क्रिटिकल एज है जहाँ पर बच्चे अपने साथ साथ अपने शारीरिक चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस से गुजर रहे हैं, और बिल्कुल ये जो परिवर्तन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पर चेंजेस इंसान को पूरी तरह से चेंज कर देता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और कहीं ना कहीं जब ये चेंजेस आते हैं और अगर इस चेंज को समझने के लिए हम उनका साथ नहीं देते तो ये तो स्वाभाविक है कि बच्चे उन्हें जो समझे वे उन्हीं के पास जाएंगे। और अगर आप, कई बार होता है कि बस एक माता पिता होने के नाते या एक अभिभावक होने के नाते मैं इस बात को पूरी तरह से समझ पा रही हूँ, क्योंकि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, वो तो चलो बच्चे हैं ही, पर इसके साथ साथ उस स्टेज पर हम कितना सीख रहे हैं, बीइंग अ पेरेंट हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर स्टेज पर हम सीखते रहते हैं, हम सीख कर आगे बढ़ते हैं, और सिखाने वाले भी ये बच्चे ही हैं, और सीख कर बिल्कुल एक दूसरे को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, ना कि एक दूसरे को जज करना है। कई बार कहता है ना कि उनको समझने के लिए हमें वो सीढ़ी उतर कर थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है उनके लेवल पर, ताकि हम उनकी बात को समझ सके, उनके पॉइंट को समझ सके, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी जजमेंट। बस यही तो चाहती है आज की पीढ़ी, है ना। सो दिस इज आज आपकी चिट्ठी मिली जहाँ पर बातें करते हैं, भाई हम किसी को जज नहीं करते, यहाँ पर आपके दिल की बात आप रख सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप फ़ोन कॉल के माध्यम से भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। 4028070 इज़ द नंबर

जजमेंट बस यही तो चाहती है आज की पीढ़ी है ना. सो दिस इज आज आपकी चिट्ठी मिली जहाँ पर बातें करते हैं भाई हम किसी को जज नहीं करते, यहाँ पर आपके दिल की बात आप रख सकते हैं. डेफिनेटली अगर आप फ़ोन कॉल के माध्यम से भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम. 4028070 इज़ द नंबर.

आपकी चिट्ठी मिली रेडियो मनोरंजन पर। और चलिए एक एनिमल लवर की चिट्ठी। और एनिमल लवर यानी जो पशुओं से बहुत ही प्यार करती हैं। और आप लिखती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम को सुनना, और अगर आप मेरी इस बात को आज के इस प्रोग्राम में शामिल करती हैं दिल से थैंक यू। आप कहती हैं कि मैं एक एनिमल लवर हूँ, पशुओं से बहुत प्यार करती हूँ, खासकर मेरे यहाँ जो डॉगीज हैं उनकी मैं सबसे फेवरेट हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ और मेरे यहाँ काफ़ी सारे डॉगीज हैं, और मेरा जो दिन है इन्हीं की देखभाल से शुरू होता है, इन्हीं की देखभाल में ख़त्म होता है। मैं जब घर जाती हूँ जिस तरह से मेरे जो डॉगीज हैं मुझे ग्रीट करते हैं, मुझे मिलने आते हैं, मुझ पर छलांग लगाते हैं, मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत दिल से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। पर मुझे दुख होता है जब कई सारे लोग डॉगीज़ को अपने आंगन में रखकर भी उनको वो टाइम नहीं दे पाते, उनके साथ वो बर्ताव नहीं कर पाते। क्योंकि एक पशु को पालना भी ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। और कहते हैं ना कि एक बेजुबान जानवर को अगर आप अपने घर में पनाह देते हैं तो उस पर कोई अत्याचार ना करें, उसकी देखभाल पूरी ढंग से पूरी दिल से कीजिए, क्योंकि वो बेजुबान जानवर बस आप ही के सहारे है। और डॉगी जो है वो एक ऐसा जानवर है जो भले इंसान आपसे मुंह मोड़ ले पर वे आपको देखकर कभी ना खुश नहीं होंगे, आपको हमेशा दिल से चाहेंगे, दिल से प्यार करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं अगर हो सके तो अपने पशुओं से अच्छा बर्ताव करें। That's really sweet of you. आपका एक छोटा सा मैसेज भी एक बहुत ही ठोस मैसेज लगता है। कई बार बिल्कुल हमने भी देखा है कि बहुत सारे लोग अपने घर आंगन में पशुओं को पालते तो हैं पर उनकी देखभाल ढंग से नहीं करते, उसे समय नहीं दे पाते, या फिर कई बार उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, मारा पीटा जाता है, खाना समय पर नहीं दिया जाता, उनकी देखभाल नहीं की जाती। कईयों के घर में तो ऐसा भी है कि पालतू जानवर को पूरा दिन बांध कर रखा जाता है, एक तरह से ये भी तो एक अत्याचार ही है। सो थैंक यू सो मच इस पॉइंट को, इस बात को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। दिल से आपको भी कहेंगे थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपकी चिट्ठी मिली एक ऐसा मंच है जहां पर दिल खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं बिना डरे, बिना झिझक के। हम कोशिश करेंगे हम आपकी बात को इस मंच में

टपिक कर सके। कई बार टेलीफोन के माध्यम से आप अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कई बार छोटे छोटे मैसेजेस के माध्यम से हमें ये लिंक्स भेजते हैं या बात करते हैं, तो इसको पूरी तरह से एक स्टोरी फॉर्म देना, भाई आशा करते हैं कि हम इस बात को डेपिक कर पाते हैं अच्छे ढंग से। कहीं कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को चोट पहुंचाना। एंड चलिए इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम को जारी रखते हैं गीतों के सफर में। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? वैसे हमारे कॉलर्स बिल्कुल लगातार हमें कॉल करते आए हैं, 4028070 पर सुदेवी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है मौका से, और उदय जी हमारा साथ दे रहे हैं इस वक्त अगवेजपुर से, थैंक यू सो मच।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: रेडियो मनोरंजन पर आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हुए हैं और बेशक अगर इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हैं घर की ओर जा रहे हैं सो जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस वेरी केयरफुल ऑन द रोड्स क्योंकि बिल्कुल चार बजते ही सभी को घर जाने की बड़ी जल्दी होती है और इसी में कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं डेफिनेटली बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है एंड विद दैट इट्स ऑलरेडी भाई 4:45 बज रहे हैं सो एंजॉय कीजिए अच्छे अच्छे गाने घर की ओर अच्छे मूड के साथ आप जाइए एंड डेफिनेटली जैसे आज की पहली चिट्ठी थी बिल्कुल घर जाके एक प्यारी सी पप्पी प्यारी सी झप्पी अपनों के साथ शेयर करना ना भूले कई बार हम कहते हैं ना बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कहते हैं कि भाई ऐसी छिछोरी हरकतें हम नहीं करते अरे छिछोरी हरकतें थोड़ी है ये तो प्यार है प्यार कभी कभी जताना भी चाहिए बताना भी चाहिए दिखाना भी चाहिए छुपाना क्यों है भाई इतनी प्यारी सी चीज़ ऊपर वाले ने दी है आपको और बिल्कुल जताइए बिल्कुल बताइए अपने बच्चों को कि आप उनसे कितना प्यार करते हो सिर्फ बच्चों को ही क्यों भाई पति पत्नी को भी तो कह सकते हैं एंड डेफिनेटली आज यही जो एलिमेंट है कहीं ना कहीं बहुत बहुत बहुत कम हो रहा है एंड दैट इज़ वाई कहते हैं ना कि रिश्ते टूटते बिखरते हुए नजर आ रहे हैं भाई यही तो वो गोंद है जो आपके रिश्ते को बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखता है So go for it, my dear guys, और इसी के साथ नहीं हम है ना आपको याद दिलाने के लिए कि प्यार एक ऐसी जरूरत है जिंदगी को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में प्यार कम हो रहा है तो आप मार दीजिए तड़का प्यार का किसी ने रोका है आपको हम कुछ गलत कह रहे हैं

कभी-कभी प्यार जताने के लिए कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं करने पड़ते। आपके आंगन में कोई फूल खिला है तो उसे तोड़कर अपनी वाइफ को दे दीजिए विद अ नाइस एंड स्ट्यूपिड सी क्यूपिड सी स्माइल के साथ।

चलिए इसी के साथ आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम को यहीं पर स्टॉप करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी बात आएंगे रोशन हर नाम आपका साथ देने के लिए कलाकार के बात कार्यक्रम को लेकर, जहां पर आपका वे साथ देंगे, आपका मनोरंजन करेंगे और साथ ही साथ हमारे एक स्थानीय कलाकार जुड़ेंगे उनका साथ देने के लिए। और एक ऐसी आवाज, ऐसी बुलंद आवाज, और ये आवाज है हमारे मॉरिशस के एक ऐसे कलाकार की जिनका नाम है शत्रुघ्न संजय जी। तो जरूर उनके गीत, उनकी बातें, उनकी जुबानी आप सुन पाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो जरूर आप उनका साथ दीजिएगा और हमें यहाँ पर दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे चलते चलते यूं ही रेडियो मनोरंजन के लहरों पर, जुड़े रहिए। आपका मनोरंजन हर एक कार्यक्रम के साथ अलग अंदाज में किया जाता है। और वैसे आपकी चिट्ठी मिली कार्यक्रम नेक्स्ट वीक यानी फ्राइडे को शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच। जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है। रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या आपको।

0: 94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
1: घड़ी मिलाते चला शाम के 5:05 हो गए बा और अभी अभी आप लोग सुन ला जा रत्ना जी द्वारा बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी मिली और अभी के लिए तो हर खतीर ये कार्यक्रम तैयार हो गए बा
2: कलाकार की बात

0: मधुबनी के प्यारे प्यारे श्रोतागण भाई बहन लोग संगत्यालोगन कैसे हो आजा रेडियो मनोरंजन पर आप लोग के हमनी शानदार स्वागत कर रहे थे जा शुक्रवार के सांझ के बखत बा 5 से लेकर 6 बजे तक का तोहर खातिर प्रोग्राम कलाकार के बात और कलाकार के बात हमनी एगो बहुत ही सुंदर आवाज से आज आरंभ कर लीजा और उ सुंदर आवाज तो लोग तब पहचान ले हो जा कहे कि ये आवाज जो ना बहुत ही जानल पहचानल आवाज हम मॉरिशस भर में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार होवन जब ओकर हारमोनियम हमने सुन ली स त जान गेली स कि आज हमनी के बीच में आल होवन गुरुजी संजय शत्रुघ्न जी प्रणाम गुरुजी
1: प्रणाम प्रणाम
0: कैसे हो भाई संजय जी
1: बस आपकी कृपा से और ईश्वर की कृपा से हम यहां पर हैं और जितने हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के प्रेम के प्रति हम लोग यहां पर हैं
0: बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम में तू प्रवेश कर ला अपन हारमोनियम के साथ ई त बहुत कम देखे के मिलेला कलाकार के बात प्रोग्राम में और अपन वाद्य के साथ आइला अपन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आइला और हमने प्रबंध कर लीजा तब बहुत-बहुत धन्यवाद भाई संजय जी
1: रोशन जी
0: और साथ ही साथ हमने के साथ एगो और मेहमान बा ओकर हमने बाद में परिचय देब जा तो हर परिचय हमने के श्रोतागण के फिर से सुना ल
1: जितना श्रोतागण लोग हमने हमने संगे जुड़ल हवा जा हम है संजय शत्रुघ्न आप सभी लोग हमसे हमर से परिचित हवा जा और बहुत खुश हैं कि आप लोग हमार प्रोग्राम से और हमार भाई रोशन के ये बेहतरीन प्रोग्राम में जुड़ल हवा जा और आगे रोशन जी
0: बहुत धन्यवाद संजय भाई ऐसे ही गाते रहिए सरस्वती माता का आशीर्वाद तो हर पर बरसता हम देखत हैं और गाते गाते हारमोनियम उंगली ओकर पर चलाल बा अपने से उंगली हिलता का बोली तोरा हम के देख के गावत था परंतु हो जा उंगलियों पर काम करता ये बोला जला प्रोफेशनल सिंगर एंड म्यूजिकलिस्ट जैसे बोली लजा और याद दिला दे हमने के श्रोतागण के कि तो लोग एमबीसी के साथ सगबा खेले जब भाई संजय जी बात करियन गाना गायन तो उही से हमने को प्रश्न निकाल के तोहरा हमने पूछब जा और एमबीसी के साथ खेलबा त तोहरा दुगो टिकट प्राप्त होई जलसा के रात बा एगो कार्यक्रम अभी चली 26 सितंबर के शाम के तैकर बारे में हमनी विस्तार रूप से चर्चा करब जा और तोहरा दुगो एंट्री टिकट्स प्राप्त होई तई बाद में फिर से चर्चा करब जा चला हमनी के जो आज के मुख्य मेहमान होवन हमनी के जो मुख्य कलाकार होवन जो भोजपुरी जगत में खूबे चमकेला बहुत ही चमकता सितारा होवन ओकर से हमनी बात करी लजा और आज दूसरा भाग कहे कि पहले तो भाई संजय जी आगर ललन अपन संगीत के सफर के बारे में बात कर ले ललन अब हमनी के बतावो भाई संजय जी हमनी के भोजपुरी महारथी हुआ हमनी के मॉरिशस में तो हमनी के बतावो कि जो हमनी के कलाकार हुआ जा वो लोग ज्यादातर बोले लंजा कि वो लोग के शुरुआत भोजपुरी क्षेत्र में खासकर भोजपुरी संगीत में गमत के साथ शुरू होल और हमने के बतावा तोहर ऐसन सफर शुरू होल गमत से या तू बॉलीवुड गाना गा के अपन सफर शुरू कर ला
1: रोशन जी पहले के समय में है एगो मनोरंजन रहल आगे पंडाल में गमत जोन रहल वो सचमुच एगो बढ़िया मनोरंजन रहल सकेला बोले एगो एगो व्यक्ति जोन सकेला बीमार भी होई एगो एगो गमत में जब बैठ

0: ना तो अपने आप ओकर ओकर बीमारी से की ठीक हो जाए
1: तंदुरुस्त हो जाला
0: बिल्कुल तो ऐसे में हम भी एकर से प्रेरित थली गमा जैसे कि बड़े बड़ा गायक रहा जैसे कि सुनानी अंजी रहल बसंत सिपोल जी रहल विष्णुहरि जी रहल ऐसे में अलग अलग बहुत गायक लोग के देखले हैं तो हम भी उस समय हम भी वो प्रेरणा रहल कि गाय के तो उस समय जवान रही तो शायद बहुत लोग नहीं जाने ला हम भी यही क्षेत्र में घुसल रही तनिसन गमत में गाय हवे चीज रहल और हमने के बहुत आनंद मिले गमत गीत गाय के
1: बहुत अच्छा भाई संजय जी तो गमत के साथ ही शुरुआत कर ला और तोहर जोन प्रेरणा के स्रोत रहल तोहर जोन पुरनिया कलाकार रहलन जो आज इस दुनिया में नहीं होवन ता ओ लोग के तू श्रद्धांजलि अर्पित करत हुआ जा गुरुजी और ओ लोग से सीख के ओ लोग के देख देख के तू भी एक क्षेत्र में प्रवेश कर लेला और आज कहां से कहां पहुंच गएला और ई बात हम के चाहेला अवश्य बोले के कि ऐसा मकाम पर तू पहुंच गल हुआ आज कि तोहर बहुत से शिष्य और शिष्या बा एगो शिष्या तोहर संगे आज आल हुआ नोकर बारे में अपनी बात कर अब जा और कुछ बा और तोहरा जोड़े के हाँ जी चला एगो गजल हाँ गजल ता हम जानी ला तू बहुत ही अच्छी तरीके से गावेला ले परंतु जब गमत के तू चर्चा कर ले हुआ तो कहे नहीं हम तोहर से गो गमत के जो न प्रदर्शन है वो हमनी तनी सुनब जा अपन श्रोतागण के तनी ये प्रदर्शन कर दे तो वो लोग बहुत ही कृतार्थ हो जायन
0: क्या बात है रोशन
1: बोला
0: हमरा पर याद करके थोड़ा एक दो अंश करे कि अभी
1: नहीं हम तो जानी ना हम तो जानी ना हारमोनियम के साथ गए बा और सब तो हर दिमाग में बसल बा
0: अच्छा एक अंश कर दिला

0: शास्त्र और पुराण भी कुछ कम तो नहीं है कोई वेद पुजारी कोई बना शास्त्री मार गई मुझको ये संगीत कटारी मैं तो साजों का दीवाना मैं तो सुरों का दीवाना सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि हाय सुना सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि सात सुरों में गीत गाऊं राग रागनी कोई बज तानसेन कोई बना सुबीर सेन मार गई मुझको ये संगीत कटारी मैं तो साजों का दीवाना मैं तो सुरों का दीवाना
1: हाँ क्या बात बा भाई संजय जी इतना तू चार चांद लगा दे लाई कार्यक्रम में और तो हर खातिर जितना तालियों की गूंज कर अब सो उतना ही कम हो ये वेद की वाणी वेद की चर्चा कर ल और बहुत ही प्रभावशाली शब्द बा इस गमत के जो छोटा सुन टुकड़ा हमने के पेश कर ल बहुत ही बढ़िया तो चलो भाई संजय जी है गमत के अंश तोहर खातिर प्रस्तुत करलन और उ में एगो शब्द आवेला वेद तश्रोतागण तोहर काम अब शुरू हो गल बा अगर तू चाहत हुआ गुरुजी से बात करे के और हमनी के प्रश्न के जवाब दे के त अवश्य करे सकबा 4028070 पर कत सौ दिखाजीस पर अवश्य जवाब दिया और एमबीसी के साथ खेलिया और दूगो टिकट तू जीतिया और कौन टिकट जीत बा जोन फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट बा जोन धमाका बा जोन हो शनिवार 26 सितंबर को यानी कल नहीं अगले शनिवार को 2026 को ब्लिस ब्लैंकेट होल आर्सेनल में हो जा हमनी के बोली लजा की तैयार हो जा एगो नाइट फुल ऑफ भोजपुरी म्यूजिक डांस एंड एंटरटेनमेंट हो जा पर मनोरंजन होई नृत्य होई और संगीत भी

0: हो गई है तो हमनी के जवाब द जलसा के रात प्रोग्राम के नाम है जो फर्स्ट भोजपुरी लाइव कॉन्सर्ट है ऑसिनाल में और तुहरा मौका देवल जाता दो गो टिकट जीते के और इमें भाग लेके वहां लाइव परफॉर्मेंस रही रंभाराम तोहर नीरज गुप्त मधु किशोर किमिया कुणाल हिरिलाल रोशन सदा सिंह और कृषि मोनिक डीजे रही नेल के स्पाइकी वी डीजे वकील डीजे अभी और डीजे अनी तो चला हमनी के जवाब द भाई संजय जी बतैलन वेद और तो लोग जाने लगा कि चार वेद बा अब भाई प्रश्न रही कि कौन कौन से वेद बा हमनी के बतावे कि जो न चार गो वेद बा उमें से कौन सा वेद है जेकर में संगीत के वर्णन होल बा जो सबसे पुराना वेद है उत ऋग वेद है हमनी जानी लजा त इ चार वेद में से कौन सुन वेद है जेकर में संगीत के खूबे वर्णन होल बा और भजन कैसे करल जला हवन मंत्र कैसे करल जला ओकर में वर्णन करल गल बात है 402-8070 पर जवाब द और हमनी बरहब सापन मेहमान की ओर और संजय भाई हमनी के बताओ कि तोहर शिष्य यहां पर उपस्थित हो गल हवन
1: बिल्कुल हमनी के बीच में हवन तान्या जी हाँ तो तान्या जी यहाँ हमारे साथ हमारे संज्ञार बा और खासकर तोहर बुलावा से भी यहाँ पर उपस्थित हवन अगर कोनो प्रश्न होई ओकर संगे पूछे के या फिर गाय के उसके बिल्कुल
0: बिल्कुल तो तान्या जी हमनी के स्वागत स्वीकार करे तान्या जी नमस्ते कैसे हुआ तान्या जी
2: सबको के नमस्ते
0: नमस्ते ठीक हुआ और भाई संजय जी के साथ आल हुआ अपन गुरु जी के साथ तोहरा कैसे बुझाता है जा आके
2: बहुत अच्छा
0: लगा था रेडियो के स्टूडियो में पहली बार के लिए आल हुआ जा
2: हाँ पहली बार
0: के लिए आल हुआ जा और चला हमने तोहर से अभी बात करब जा तो एगो श्रोता भी फोन करत हुआ ओके ले लेना जा पहले ओके तान्या जी चला हम श्रोता के ले लेना जा देख ला जा के हो ऑनलाइन पर हेलो
3: हेलो रोशन भैया नमस्कार
0: नमस्कार वीना बहन त्यागू से बात करत हुआ
3: हाँ और संजय भाई के भी बहुत बहुत स्वागत बा हमर घर में
1: हेलो
3: और हमर हमनी के मतलब भोजपुरी जितने परिवार बा सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई
0: हाँ सुनत हुआ बहन के सुनत हुआ
3: हाँ
0: वीना जी के नहीं सुनत हुआ
3: सुनाता
0: अतन वीना एगो वीना जी अतन इंतजार करिए अब सुनाता था अब सुनाइए तो भाई जी तुम्हारा अब सुनत हुआ
3: भाई के भी बहुत बहुत स्वागत और शुभकामना बा
1: बहुत धन्यवाद
3: बहुत बधाई बा जोन कार्य करत हन भोजपुरी क्षेत्र में उनकर आवाज तो बहुत ही सुंदर बा
1: बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद तुम्हारा आशीर्वाद और ऊपर वाला
3: जी और हम आपके बहुत कैसे बोलला फैन है
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
3: हां बहुत सभी भोजपुरी कलाकार मॉरीशस के एक से एक बढ़ के वहां हमारे देश में तो सबके ओर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देवत है
1: बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद वीना जी तो अभी गुरु जी गए लन वेद पर
3: उत्तर हम ई देवत है हमर ज्ञान में साम
0: सामवेद है अच्छा हम तो हर जवाब नोट कर रहे हैं वीना जी सामवेद बोलत हुआ तो चलो तो हर जवाब नोट कर ले हैं देख अब सा दूसरा श्रोता सही जवाब दे कि नहीं ओके अच्छा धन्यवाद चले गो दूसरा श्रोता के हम स्वागत कर रहे जा हेलो हेलो
4: नमस्ते रोशन जी
0: नमस्ते शोभा जी बाकवा से बात करत हुआ
4: हाँ
0: हाँ और हेलो
4: हेलो हाँ
0: संजय भाई के सुन ला संजय भाई
4: हाँ और संजय भाई को भी नमस्ते
1: बहुत नमस्ते आपको
0: हाँ ओकर गाना कैसे लगल तोहरा शोभा जी
4: गाना एकदम बढ़िया और टिकटॉक पर भी उनकर भजन देखले हैं हमेशा मिलेला टिकटॉक पर
1: बहुत
0: हाँ और बहुत ही हैंडसम दिखेल ना
4: हाँ
0: हाँ जैसे मॉरीशस का अमिताभ बच्चन जी होवन तब बोला शोभा जी जैसे गुरुजी गएलन वेद पर आधारित कौन जवाब दे बतू
4: जवाब सामवेद
0: सामवेद अच्छा सामवेद तो चला भाई सटुगन से पूछी रजा सामवेद

0: एकदम सही जवाब
1: एकदम सही जवाब
0: शामवेद बधाई हो आपको
1: बधाई हो तो
2: धन्यवाद और शुभ संध्या
1: शुभ संध्या बीना जी और शोभा जी दोनों के नाम हमने जोड़ ले ले हैं सर और है जा तो हर नाम विनर के लिस्ट में चला अब एक अब से लकी ड्रॉ के जरिए के कर जीत हुई आज तो सामवेद के बारे में को गमत टाइप के गईला ना बहुत अच्छा तो हमने के बताओ अब तानिया जी से हमने बात कर अब जा या चल तानिया जी से हमने बात करी रह जा और एक बार फिर तोहरा हमने स्वागत करे थे जा तानिया जी हमने के बताओ गुरु जी के साथ अभी वोकल करत हुआ या हारमोनियम सीखत हुआ हमने के बताओ
3: दोनों
1: दोनों यानी आप संगीत सीख रही हैं और हारमोनियम भी सीखत हुआ हम्म काहे कि गुरुजी के जो ने को इंस्टीट्यूट है ओकर नाम है
3: एसएस
1: स्वर संगीत सिंगिंग एंड हारमोनियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पावल जला का ट्रबोन में अगर तो लोग सीखे खोजत हुआ जा कैसे गायके गायकी में रुचि रखत हुआ जा और हारमोनियम भी करे खोजत हुआ जा तो गुरुजी तो यहाँ मौजूद होवन बहुत ओकर छात्र और छात्राओं का से सीख के बहुत ही बढ़िया तरीके से गावेलन और हारमोनियम भी खेलेलन तो तानिया जी हम सुनले हैं कि तो भक्ति विधि के बारे में बहुत कुछ जाने ला जब एगो विवाह संस्कार होला तो जो वर और वधु के वो लोग पर हरदी चढ़ेला है ना एगो हल्दी विधि के बारे में ई कहे होला हमने के बतावा तनी तानिया जी
3: हाँ हल्दी हमने के रीत और रिवाज है ई हल्दी विधि का है कहे हमने हल्दी डाली लाजा हमने के खूबसूरती के लिए आशीर्वाद के साथ साथ हमने के रक्षा भी करेला हल्दी दुल्हा दुल्हन के सूरत के प्रकाशित करेला ई पीला रंग शुभ मानल जाला साथ साथ में ये हमनी के बुरी नजर और भूत प्रेत से बचावेला
1: बहुत अच्छा तो बहुत ही संक्षेप रूप में आप हमनी के बताएला कि हल्दी विधि के महत्व का हमनी के संस्कृति में बहुत बहुत धन्यवाद तानिया जी तो हम तो हसे एगो मांग करती है एगो हल्दी गान सगबगाई हमनी खातिर अच्छा बहुत ही बेझिझक बोलत हुआ एगो हल्दी गान सगबगाई तो चला हमने तुहरा सुनी ला जा
3: धन्यवाद

0: बहुत ही सुंदर तरीके से हल्दी गान हमने के सामने प्रस्तुत कर ला तानिया जी और तो हरा बहुत ही बधाई हो ऐसे ही बहुत ही अच्छी तरह से सिखलापन गुरुजी के साथ है ना ऐसे ही सीखते जाइए और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते चल जाइए
1: धन्यवाद
0: चलो गमत के बारे में हमने बात कर ली जा गुरुजी के आवाज में एगो गमत टाइप का एगो अंश सुन ली सा हल्दी गान भी तानिया की आवाज में हमने सुन ली सा अब बारी बा गजल के जब गुरुजी के नाम ले लसा तो काहे गजल नहीं छेरब जा काहे

0: कि गुरुजी जो रहल गत साल एगो बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता का आयोजन करे रहलन गजल सिंगिंग कंपटीशन जहां पर बहुत नया नया जो कलाकार रहलन उभर के आगे एलन जा ओ लोग के हमनी पहचान ले लीजिए जा कि कैसे इस गजल में ओ लोग अपन कला के प्रदर्शन कर लन जा तो चला गुरुजी हमनी के लिए हमनी के श्रोतागण के लिए एगो बहुत ही सुंदर सा गजल आप प्रस्तुत कर हमनी सुनब जा भी
1: अवश्य एक बहुत पॉपुलर गजल है ये अनूप जलोटा जी गैलेवन
0: हाँ

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद श्रीमान संजय शत्रुघ्न जी के साथ साथ ही साथ तान्या जी के साथ है जा हमने सुना है कलाकार के बाद और हमने सुना है जा हारमोनियम की ध्वनि और आवाज में तब बहुत ही निखार यह हमने के गुरुजी संजय शत्रुघ्न जी और बहुत से जो शिष्यगण हुआन ओकर से सीखत हुआन जा तचन हमने गजल के बारे में तनी बात करी ले जा त भोजपुरी में त बहुत ही माहिर हुआ जा संजय भाई त गजल कैसे सीखले हुआ हमने के बतावा तनी
2: वैसे गजल हमरा बहुत प्रेरणा मिलल बा बहुत बड़ा बड़ा गजल गायक लोक संगीत जैसे कि पंकज उदास जी अवन गुलाम अली जी अनूप चलोटा जी ऐसे बहुत ऐसे गजल गायक हवन जा तलक अजीज तो ऐसे में हमरा ऐसे बुझाला कि गजल जो है ये सबसे कठिन है सीखे के और गाय के
1: अच्छा
2: गाय की गजल में बहुत क्लासिकल टच रहेगा और गजल में एगो सबसे अहम चीज है उसमें तलफुज वो जे एगो एगो एगो गायक जे गावा तो का तलफुज जे अच्छा नहीं रही तो वो गजल बेकार में चला जा
1: तलफुज
2: यानी कि ओकर जो डिक्शन बा
1: अच्छा सब ओकर जो ज्ञान बा स्वर तार और लय के
2: वो कैसे उतारा था वो
1: अच्छा हां
2: तो ये सब बहुत अहम भाई में और एगो गजल के ओकरा प्रस्तुत करे के ओकरा निभावे के ओकर अदा जो वो एकदम अलग
1: अच्छा
2: वो बॉलीवुड सॉन्ग जैसा नहीं है वो कोनो भोजपुरी

0: पूरी या फिर कोनो स्टाइल में नहीं है वो अपन ओकर अंदाज अलग है
1: अलग है
0: और गजल जो खा शायरी से चले ला और शायरी जो खा सीधा एगो एगो एगो एगो व्यक्ति के दिल के छूले वाला
1: दिल से निकले रहा और दिल के छूले वाला
0: एकदम वो एकदम अलग
1: एकदम अलग और जितना गजल के जो प्रदर्शक था वो लोग के हमने देखल दिखने से बैठ बैठ के परफॉर्म करे के तो गजल हमेशा अच्छा बैठ के परफॉर्म करे के गुरुजी
0: ये गो अलग अदा है बैठ के एकर एगो व्यक्ति जब एगो गायक जब बैठ के एगो एगो गजल के प्रदर्शन करेलन तो वो एगो दूसर एगो एगो घराना के जैसे कि ऐसे ही चाहे ना ओकरा उतारे के खड़ा होके एगो गजल नहीं सकेला गया वो एकदम अड लगी
1: बहुत अच्छा तो चलो हम जान लिया सर कि हमने के जो श्रोतागण हुआ तुहर एगो गाना सुने खोजत हुआ जा
0: अवश्य
1: तो चलो बहुत गाना बात तुहर एगो गाना तो अभी गई जैसे शुरुआत हो सजनी का है ना
0: अच्छा
1: तो एगो दूसर हमने डालब सर
0: मितवारे मैंने किया था
1: हाँ मितवारे मुन्ना रे बिटवारे हाँ ये है हमार देश के नौजवान ये हम डाले खोजत हैं
0: जैसे आपकी मर्जी
1: बहुत ही प्रभावशाली शब्द बाई में तो हर अनुमति से हम
0: अवश्य अवश्य
1: अच्छा धन्यवाद आपको भाई संजय जी तो चला हमने के सुना जा और आप रेडियो मॉरिशस नहीं बल्कि रेडियो मनोरंजन से जुड़ल हुआ तो हर खातिर और प्रश्न अभी बाकी बा तो चला हाई गाना सुना एक बाद में हमने फिर से तोहर से बात करब जा

0: Continuous music. RM3.
1: कलाकार के बाद
2: कलाकार के बाद हमारे देश के नौजवान हमारे देश के प्रेमीजन बहुत प्रेम के साथ ये गाना गाएले भाई संजय जी हमने की बतावा बहुत प्रेम के साथ ये गाना तू गाएले बतावा
3: बिल्कुल
2: है गाना गाए के इतना ज्यादा आसान बात नहीं रहल है ना और ये गाना तोहरे बोल
3: बिल्कुल सब
2: तोहरे बोल हा
3: हमर कंपोजिशन
2: तोहर कंपोजिशन तोहर बोल और
3: इसका एकर म्यूजिक भी हम ही कंपोज कर लिया एकरा स्टूडियो में हम ही बजा लिया
2: अरे वाह क्या बात बा और एकर में गो गायिका के आवाज बा आवेला
3: ये मैं हमार जैसे कैसे बोला हमार बहन हमार कैसे बोला
2: हमार साथी
3: म्यूजिकल कार्य में बहुत हमार योगदान दिले बा
2: अच्छा
3: और रुमा देवी ओकेज चिनान और ही गीत में अपन आवाज दिले बा ये फीमेल वॉइस में बहुत उत्तम रहल
2: बहुत सुंदर और ओकर जो बोल भी है बहुत ही प्रेरणादायक बोल बा ये गाना में तो चला अब तोहर से हमने एगो आग्रह कर रहे थे जा कि एगो हिंदी फिल्म सॉन्ग गैया हाँ एगो हिंदी फिल्म सॉन्ग और बहुत से लोग तोहरा आवेदन जा तोहर यहाँ सीखे के कहे कि वो लोग बहुत फिल्मी सॉन्ग में बहुत रुचि रखे लन जा और वो लोग सोचे लन जा कि चला गुरुजी के साथ वो तक गईते रहे लन फिल्म के गाना तो कसे कि फिल्मी गाना सीखब सब परंतु जब तोहर यहाँ आवेदन जा तो तू अपन जो अंदाज में वो लोग के बेस जैसे है जो ना सारे गम अपो कर सरगम सब नोट सिखावे जा
3: अलंकार सब कुछ
2: एकर सहिते तो लोग सिखावे जा तो चला तो हर से हमने सुनब जा एगो हिंदी फिल्म सॉन्ग गाना और तो हर खतीर संजय भाई एगो बहुत ही सुंदर सा गाना गाए
3: आशा बाकी ये गीत तेरो के भाई ये गीत हम ले लिया फिल्म दीवाना से अरे का गैले बा कुमार शानू साधना सरगम जी

0: कलाकार के बाद
1: कलाकार के बाद में अभी आप तानिया जी के साथ गुरुजी संजय शत्रुघ्न के सुन ले जा बहुत ही सुंदर सा गाना फिल्म दीवाना से है गाना हुआ है तो चला 402-807-0 पर फटाफट जवाब दे कि ई जोन गाना रहल ई में कौन अभिनेता नजर आ रलन और कौन अभिनेत्री 402-807-0 पर जवाब दे और एमबीसी की तरफ से दुगो एंट्री टिकट्स पावर जलसा की रात बा प्रोग्राम कॉन्सर्ट में भाग ले खतेर चल हमनी के भाई संजय जी से पूछी ला जा कि है गाना काहे चुन ल अभी हमनी के साथ गाय के हमनी के आगे प्रस्तुत करे के तान्या जी के साथ काहे ये गाना तू चुन ल रोमांटिक गाना बा काहे
2: वैसे ये गाना बहुत गाना बा जोन रोमांटिक गीत बा जोन यो इमोशनल गीत है जहां पर सीधा एगो तीर जैसन दिल के छुले बना
1: अच्छा बहुत अच्छा तो चल हमनी एगो श्रोता के इंतजार में इंतजार करत हुआ ना जवाब दे खातिर ओके सुन ले राजा पहले हेलो
3: नमस्ते रोशन भाई
1: नमस्ते बहन जी को नाम है तो
3: हर हम कल्याणी है त्रियोले से
1: त्रियोले से कल्याणी जी के स्वागत
3: शत्रुघ्न भाई के और तान्या जी की भी नमस्कार
2: अवश्य धन्य नमस्कार आपको
1: हाँ जी
3: जवाब है ऋषि कपूर और दिव्या भारती
1: ऋषि कपूर और दिव्या भारती तो चलो हमने तो हर जवाब नोट कर ले ले हैं सर एगो दूसरा श्रोता के सुनी राजा धन्यवाद धन्यवाद हेलो
4: हेलो नमस्ते रोशन जी
1: नमस्ते आशा जी कैसे हुआ जा
4: हम तो एकदम बढ़िया है और आज के दोनों कलाकार के सुन के तो और चकाचक मन प्रफुल्लित हो गया
2: बहुत धन्यवाद आपको
1: बहुत धन्यवाद आशा जी तो वक्त बहुत कम रह गया बा खाली तीन को मिनट बचल बा अभी धमनी के बताओ कौन जवाब दे बा
4: स्वर्गीय ऋषि कपूर और
1: दिव्या भारती जी बहुत ही सुंदर जवाब दिला अच्छा बा भाई शत्रुघ्न जी
2: बिल्कुल सही जवाब
1: आशा जी देलन और कल्याणी जी भी देलन तो चलो तुहर जवाब एकदम सही आशा जी बहुत धन्यवाद
4: धन्यवाद
1: शुभ संध्या चलो बाद में गोल की ड्रॉ करब जा और तुहरा बोलब जा कि केकर जीत होल बा वीना जी शोभा जी आशा जी और कल्याणी जी के बीच में ता एगो अंतिम जो संदेश बा भाई संजय जी लगता है कि एगो तीसरा पॉट तुहर खातिर हमने के छाला रखे के जितना बात बात तुहर से बचाए कि अभी तो बोले हमने के संक्षेप में कौन संदेश हमने के नौजवान और हमने के जो मॉरिशस वासी के बा संगीत के क्षेत्र में रहते हुए तू अपन संदेश दे बा बोला
2: अंत में हम जितना सोतागन लोग हमने संगीत जुड़ल हो जा हम हाइये सका बोले कि देखा भोजपुरी जो बा हमने के मातृभाषा एके हम नहीं सक हमने नहीं सकब सा भुलाए हमने यही से जुड़ल है ऐसा हमने के रूट्स जो बोले जा वही से जुड़ल बा और चाहे कितना भी अपन जीवन में इनोवेशन लावत हो कुछ भी करत हो तो अपन भोजपुरी भाषा के बोलिया गाइया इमें नचिया इमें अपन प्रचार प्रसार जोन भी शुभ कार्य बा शुभ चीज संदेश बा पहुँचाए के जनता लोग के अपन के परिवार में इ भाषा के भूलैया नहीं
1: बहुत अच्छा तो बहुत धन्यवाद गुरुजी संजय जी और तान्या जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद हैजा ऐला गुरुजी और शिष्या साथ साथ ऐलन हारमोनियम में प्रदर्शन कर ले जा सुंदर आवाज में सभी के मन मोह ले ला जा दोनों और खासकर जो इन रोमांटिक सॉन्ग गईला गमत के अंश प्रदर्शन कर ल गजल भी प्रस्तुत कर ला और भोजपुरी में एंट्री मर ला ये तो बहुत ही बढ़िया रह धमाकेदार एंट्री जैसे बोली ला जा तो हमने के लगा था कि एगो तीसरा भाग तो संगी हमने फिर से रखब जा बाद में श्रोतागण के जो प्यास बुझल नहीं जितना तोहर ज्ञान के भंडार बा बहुत बहुत धन्यवाद तो चला एक बार फिर हमने बोलब जा कि ईश्वर तुहर रक्षा करी तान्या जी के भी और हमेशा सरस्वती माता का आशीर्वाद तो लोग दोनों पर बरसल रही तो चला हमने के जुन लकी ड्रॉ कर ली ला जा भी और ओकर उपरांत हमने के आज के जुन विजेता होवन वह आशा जानू जी कॉटेज से ओकर जीत होगल बा और ओके प्राप्त होता दो एंट्री टिकट जलसा की रात बा प्रोग्राम जो प्रस्तुत करल जा ये 26 सितंबर की रात्रि को 6 बजे से लेकर शुरू होई हो जा ब्लिस ब्लैंकेट आर्सेनल में तो चलो भाई शत्रुघ्न के हमने बोले जा बहुत धन्यवाद तानिया जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण 5:50 होगल बा और तोहर खतीर भी प्रोग्राम हमारी धरोहर सुने के बखत चला बा किरण जी हमनी के इंतजार करत हुन जा कि कब ओकरा हम मौका देब बतियाई के नमस्कार और शुभ रात्रि
0: You're listening to RM3 Radio Man

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपकी स्वागत बा। अभी हमने ओजोन लेयर पर बतियाब जा, वर्ल्ड ओजोन डे मनावल जाला हर बरिस 16 सितंबर के। ओजोन लेयर हा का चीज कहे चाहे हमने के एकर विश्व दिवस मनावे के, कहे चाहे हमने के एकर सुरक्षा करे के, एकर कौन असर बा हमने के जीवन पर, ये बात पर हमने ध्यान देवब जा। दरअसल हमने के जीवन, हमने के दुनिया धरोहर और संस्कृति के जीवित रखे खातिर घामा के जितना ज़रूरत बा उतना ही ज़रूरत बा ओजोन लेयर के, जोन घाम के उ सब जहरीला किरण के धरती पर आवे से रोकेला, जेकर से हमने के हर प्रकार के खतरा बा। ओजोन लेयर एगो ऐसन हल्का गैस है जेकर से घाम के खतरनाक रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेला और ये ब्रह्मांड में जीवन सुरक्षित रहेला। ओजोन लेयर इतना ले जरूरी है कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस 16 सितंबर के दिन इंटरनेशनल ओजोन लेयर दिन घोषित कर लेबा। ये दिन 1997 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर रहा ओजोन लेयर के हानि

हानिकारक वस्तु से सुरक्षित रखेंगे। ऐसे बहुत केमिकल्स रासायनिक पदार्थ जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हालोंस जिकर इस्तेमाल से ओजोन के परत के नुकसान पहुंचेला। ये प्रोटोकॉल के पालन ढेर देश करेलन सा और CFC होला प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगावेलन सा और एकर से संबंधित बा विना प्रोटोकॉल भी ओजोन लेयर के सुरक्षा खातिर स्थापित करा गया है। 1970 में जब वैज्ञानिक लोग दिखलन जा कि ओजोन लेयर में छेद होता एरोसोल से

बीच वगैरह वगैरह के इस्तेमाल से हुआ रहल और एक असर इतना खराब बाकी एक से सकी स्किन कैंसर कर्क बीमारी कटराक्ट भी सकी होवे और पेड़ पौधा और इकोसिस्टम के खतरा होए तब उ लोग इस सब प्रोटोकॉल के शामिल कर लंजा स्थापित कर लंजा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हीलिंग द ओजोन लेयर एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज मतलब कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए ओजोन परत के पुनर्स्थापना और जलवायु परिवर्तन से संघर्ष इस सब बात के शामिल कर गल तो जिसे देखा था वह ये सब प्रोटोकॉल के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय दिन हमने के एहसास दिलावेला कि ओजोन खाली पृथ्वी पर जिंदगी खातिर जरूरी नहीं है बल्कि हमने के भावी पीढ़ी खातिर चाहे ओजोन के बचा के रखेगी हमने अपन जीवन जी ले वैसा लेकिन हमने के चाहे आवे होला पीढ़ी खातिर ये सब जो आकाश बा ये सब जो प्राकृतिक संसाधन बा उ लोग के सुरक्षित रखेगी आवे होला पीढ़ी खातिर ओजोन भी दिग्बता धरोहर के रूप में ही हमने के मिलल बा और ये अमानत के रूप में हमने के चाहे आवे होला लैका लोग के सुरक्षित छोड़ के जाए के ताकि उ लोग सकियन जा एगो स्वस्थ दुनिया में स्वस्थ रूप से सांस लेवे और यहाँ पर कोनो जहरीला किरण के नहीं जाही परे के जैसे कि कोनो बीमारी सकी पैदा हुई तो हमने सब कोई के जिम्मेदारी बनेला कि ओजोन लेयर पर जस्ती से जस्ती जानकारी पाव जा और कैसे एक सुरक्षा हो काहे ई महत्वपूर्ण है इस सब बात हमने के चाहे जाने के औरों के जनावे के कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला बहुत धन्यवाद नमस्ते

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्वतंत्र मॉरिशन राज्य की नींव रखने वाले ससु सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती है। पॉपुलर में उनकी समाधि पर और पोर्टवी वाटर फ्रंट पर स्थापित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने इस हफ्ते एमबीसी का दौरा किया। एल नीनो की वजह से सूखे मौसम का असर और बढ़ा और इंडोनेशिया जंगलों की भीषण आग से जूझ रहा है। 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल राख। और सऊदी अरब तथा यमन के हुती विद्रोहियों के बीच संघर्ष तेज। कल सीमा वाले इलाकों में हुए हमलों में 24 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। 18 सितंबर 1900 को केवल नगर में ससु सागर राम गुलाम का जन्म हुआ था। आज उसी स्थल पर मॉरिशस के सबसे पहले प्रधानमंत्री की 126वीं सालगिरह पर कई महानुभाव उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए। ससु सागर राम गुलाम मेमोरियल पार्क में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की मौजूदगी में फूल चढ़ाने की विधि सम्पन्न की गई। मंत्री राजेश भगवान, अविनाश राम तोहल, महेंद्र गुंदिया, सांसद रेजा समताली, फ्लाग जिला परिषद के अध्यक्ष धनराज किशुन, बेलरीफ के ग्राम परिषद की अध्यक्ष मारी कारोल पुस्तों ने भी इसमें भाग लिया। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले दिवंगत ससु सागर राम गुलाम को नमन किया गया। निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सुधार, आवासीय परियोजनाएं, श्रमिकों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष

0: किया था ये उनकी मात्र कुछ ही उपलब्धियां हैं इसकी सूची इससे बहुत ज्यादा लंबी है स्वतंत्र मोशन राष्ट्र की नींव रखने वाले सचिव सागर राम गुलाम की आज 126वीं जयंती पॉम्पलेमसस बोटानिकल गार्डन में आज सुबह राष्ट्रपति की समाधि राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सचिव सागर राम गुलाम एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन मॉरिशस निर्माण में समर्पित किया उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह बड़ी संख्या में लोग पॉम्पलेमसस में एकत्र हुए जरा विस्तार सुमेहरा अकबर अली के साथ
1: कम संसाधनों के बावजूद एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ते आजाद राष्ट्र का उन्होंने ख्वाब देखा था मॉरिशस के राष्ट्रपिता सर शिव सागर राम गुलाम की 126वीं सालगिरह के मौके पर पॉम्पलेमस के बोटानिकल बाग में अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
2: Tout le temps, mon vie, moi, j'ai 86 ans. Depuis mon enfant, mon connu. Mais ce qu'il est fait pour nos pays, qui aujourd'hui, même nos enfants, nos petits-enfants, peuvent récolter.
3: Ce qu'il donnait, l'éducation gratis, 23e âge, pension, tous affaires. Il n'y a pas de grand, petit, c'est pas qu'ils affaires. Égalité.
4: Tcha-tcha, là, il vient dans mon mariage. Un tcha-tcha comme ça, il dit que la lampe n'a pas gagné. Ce garçon peut suivre, il dit ça aussi, il peut faire ce qui est bon.
5: Si nous suivons la vie de Tcha-Tcha, souffrance qui nous passait depuis son enfance, son maman, son papa, fait nous sacrifier beaucoup que Tcha-Tcha est arrivé.
1: उनकी समाधि पर हिंदू रीति रिवाज अनुसार विशेष प्रार्थनाएं की गईं उनका बेटा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम उनकी बेटी सुनीता राम गुलाम जयपुर सरकारी सदस्य लिबरल पार्टी के समर्थक और चचा को निजी तौर पर जानने वाले लोग उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने सर शिव सागर राम गुलाम के सफर को एक बार फिर मिसालिया करार दिया है
6: Incroyable ça.
7: Malheureusement, dans l'histoire, pas dire qu'on s'est un petit peu allé dans Kouanagar. Mais une histoire impensable, même quand va arriver ça. Sur la vie, sur le parcours. Personne n'a pas fait du tout ça sur ça, pas même moi.
0: मॉरिशस के इतिहास की एक प्रभावशाली शख्सियत सचिव सागर राम गुलाम ने न केवल अपने सरकारी कार्यों से बल्कि अपनी गहरी बौद्धिक और सामाजिक सोच से भी अपने युग पर अमिट छाप छोड़ी थी उनकी 126वीं जयंती के अवसर पर आइए एक ऐसे राजनेता का चित्रण देखें जिसकी कलम उनके लोगों की सेवा में पहला हथियार बनी थी एक लेखक के रूप है ये पेश है ये खास रिपोर्ट विधिमा सिबरन के साथ
8: 1935 में लंदन में चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉरिशस लौटने पर सर शिव सागर राम गुलाम धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश करते हैं ब्रिटिश समाजवाद और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने गरीब मजदूरों और गिरमिटिया मजदूरों के वंशजों की रक्षा करने का संकल्प लिया 1927 से ही उन्होंने द टाइम्स अखबार में मॉरिशस शीर्षक से अपना पहला लेख प्रकाशित किया था जिसमें उन्होंने मॉरिशस के संविधान पर चर्चा की थी
9: Un title Mauritius, nous peut reproduire cet article-là. Et il y a un national Mauritius Adiapatrika aussi fin reproduire cet article-là. Dans cet article-là, jusqu'en 1927, toute bonne constitution qui nous t'y héritait, l'in faire commenter alors sa constitution-là.
8: लेखक प्रहलाद रामशरण के अनुसार सर शिव सागर राम गुलाम एक विनम्र सरल दूरदर्शी और मददगार व्यक्ति थे मॉरिशस में प्रवासियों के वंशजों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति चिंतित उन्होंने अन्य प्रमुख हस्तियों जैसे वकील और के बुधन और निरंजन तथा डॉक्टर हजारी सिंह के साथ मिलकर इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की स्थापना की इस संगठन ने बाद में इंडियन सेंटिनरी बुक प्रकाशित की

0: जिसमें इस महान नेता का सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स शीर्षक से एक लेख शामिल था। यही वो लेख था जो उनका वास्तविक राजनीतिक घोषणा पत्र यानी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना।
1: मार्च महीने में उनकी पुस्तक उस उत्सव पर एक पुस्तक छपी, इंडियन सेंटेनरी बुक, और उसमें डॉक्टर राम गुलाम ने सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स आप्रवासियों की संतानें बहुत सुंदर लेख है और वो उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बना है। उसमें उन्होंने भारतवंशियों की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की है और क्या उसको करना चाहिए ये भी उसमें बताया गया है। जन आंदोलन की बात सबसे पहले डॉक्टर राम गुलाम ने सन्स ऑफ इमिग्रेंट्स अपने आर्टिकल्स में किया है और जिंदगी भर उन्होंने उसको उस पर चल करके देश को आजाद किया है।
0: अपनी कलम और अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रपिता ने इस प्रकार एक संयुक्त, स्वतंत्र और भविष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर मॉरिशस की नैतिक और राजनीतिक नींव रखी।
2: बिना कोई अस्त्र उठाए जिस महान व्यक्ति ने मॉरिशस को उनकी पहचान दिलाई, आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अवसर पर पुटली वाटर फ्रंट पर स्थापित उनकी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाए गए। प्रधानमंत्री सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे। मॉरिशस में नेशनल क्राइम एजेंसी कायम करने के सिलसिले में अभी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज पोम्पलेमस में राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए जाने के समारोह के बाद प्रेस से बात करते हुए ये बात कही। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने इस हफ्ते एमबीसी का दौरा किया ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: सोलह मिलीमीटर फिल्म ऐसी दिखती है। ये हमारे सबसे पुराने आर्काइव्स हैं, जिनमें से कुछ 1960 के दशक के आखिर के हैं। इनमें ऐसी तस्वीरें, आवाज़ें और प्रथाएं हैं जो मॉरिशस की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की गवाही देती हैं। आज भी एमबीसी आर्काइव्स में लगभग 600 रील के बक्स अलग अलग स्थिति में सुरक्षित रखे गए हैं। टोमा मोटई एक टेक्निकल विशेषज्ञ हैं और उनके साथी मैडलेन ओवात एक मल्टीमीडिया आर्काइविस्ट, दोनों फ्रांस में नेशनल ऑडियोविजुअल इंस्टीट्यूट से हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने नेशनल रेडियो और टेलीविजन स्टेशन के आर्काइव्स की एक इन्वेंट्री बनाई ताकि बनाए गए कंटेंट को बेहतर ढंग से बचाकर रखा जा सके। टोमास मोटई ने कहा,
4: On est ici vraiment dans un cas classique d'archives télévisuelles.
3: ये टीवी और रेडियो के आर्काइव्स हैं। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। समय के साथ इनकी जगह डिजिटल ने ली है और आज डिजिटल ही आर्काइव का मात्र जरिया है, यानी कि इन आर्काइव्स को डिजिटल रूप में संरक्षित करना है। टेलीविजन और रेडियो के ये ऑडियो विजुअल आर्काइव्स देश की सच्ची स्मृति हैं। इस आर्काइव को बेहतर ढंग से बचाकर रखने के लिए सुझाए गए तरीकों में से एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कायम करना है। मैडलेन ओवात कहती हैं, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी खासियत है, रिपोर्ट के अपने अपने तरीके। किसी विषय पर रेडियो और टीवी दोनों का डेटाबेस बनाया जा सकता है, लेकिन इन फाइलों को प्रबंधित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। आर्काइव सेक्शन की हेड रशीदा जहांगीर ने कहा, बहुत सी कंपनियां, स्कूल और यूनिवर्सिटी भी हमसे चित्रों की मांग करती हैं। चित्रों को ऑनलाइन डालते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर पब्लिक की पहुँच और एमबीसी के कर्मचारियों के लिए इसके लिए समय भी लगेगा। एमबीसी हर साल हजारों घंटे का कंटेंट बनाता है जिसका रक्षण आवश्यक है। दो प्रोडक्ट नजरिए से फायदा हुआ, एक प्रोडक्शन को डॉक्यूमेंट करने और

0: प्रचार करने पर आधारित और दूसरा उन्हें बचाने और पुरानी रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करने लायक बनाने के तकनीकी तरीकों पर आधारित हैं।
1: पिछले कुछ दिनों से आगालेगा में समस्याएं फिर बढ़ रही हैं। बिजली की कटौती, खराब अवन के कारण रोटी की आपूर्ति में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्शन बाधित होना और मरीजों को मॉरिशस लाने में परेशानी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। द्वीप समूह के अलग थलग होने के कारण रोजमर्रा की ये समस्याएं जल्द ही गंभीर रूप ले सकती हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इन समस्याओं के स्थायी समाधान खोजे जाएं ताकि उन्हें बार बार इन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: घोषबुआ में लेजामी दागालेगा संगठन की ओर से उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो किसी तरह के इलाज के लिए, शिशु को जन्म देने के लिए या फिर प्रशासनिक कार्य संपन्न करने के लिए मॉरिशस आए हुए हैं। साथ में वे लोग भी जिनके पास आवास संबंधी पैसा चुकाने के लिए जरिया नहीं। लावाल सुब्रमण्य करीब एक चौथाई सदी से इसके अध्यक्ष है। द्वीप समूह जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन्हें अक्सर इसके बारे में सुनना पड़ता है। कुछ दिनों से वहां बिजली की आपूर्ति कट गई है, रोटी नहीं और साथ में इंटरनेट संबंधी परेशानियां भी हैं। आगालेगा वासियों की तरफ से संबंधित परेशानियों के बारे में बताया गया। सुब्रमण्य लावाल ने कहा, कुछ समय से ये पाया गया है कि जनरेटर ठप है। काफी समय से इसके बारे में कहा जा रहा था। बेहतरीन समाधान फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाना है। ये देखा गया है कि जब जनरेटर खराब पड़ जाता है तो कई क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। हाल में एमटेल संबंधी परेशानी थी। ऐसी समस्याएं होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये अहम चीजें हैं। आउटर आइलैंड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आगालेगा के विकास एवं संचालन के लिए जिम्मेदार है। उसके अनुसार बिजली, इंटरनेट और ओवन की खराबी की समस्याएं निपटनी ही वाली हैं। सेबास्टियन लामी ने कहा, ओआईडीसी की तरफ से 3 जनरेटर भेजे गए हैं। 50 केवीए जहाज से इन्हें ले जाया जा रहा है। साथ में इंजीनियर और टेक्नीशियन भी हैं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय की ओर से। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि ओवन फिर से चालू है और रोटी भी पक रही है। आगालेगा के निवासियों की ओर से यही इच्छा व्यक्त की जा रही है कि उनकी अक्सर पेश होने वाली समस्याओं के लिए टिकाऊ समाधान ढूंढे जाए। यही मांग कर रहे हैं कि जनवरी महीने से ही एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, दिसंबर महीने तक लागू हो ताकि पूरे साल तक कठिनाई ना हो। कुछ छोटे मोटे समस्याएं तो होंगी ही लेकिन बड़ी समस्याएं ना हो। सांसद ईशान जुम्मन ने जल्द ही लावाल सुब्रमण्य की मांगें सुनी और अगले मंगलवार को एक बैठक निर्धारित है। पिछले साल के अप्रैल महीने में चीडो तूफान के गुजरने के बाद से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा आगालेगा का दौरा किए जाने के बाद से आखिरकार क्या बदला है? ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज करवाने के लिए मॉरिशस लाना पड़ता है। 18 और 30 वर्ष के बीच की उम्र के लोगों में बेरोजगारी की भी समस्याएं हैं। सांसद ईशान जुम्मन ने कहा, अफगान की ओर से एक अस्पताल बनाया गया, आधुनिक अस्पताल है जहां बहुत से उपकरण हैं। अफगान आगालेगा से रवाना हो रहा है, उन्होंने वहां पर अपने सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। एक समय ऐसे था जब आगालेगा में करीब 3,000 कर्मचारी थे, अब वे सभी चले गए। ये अस्पताल उनके लिए था, उन्होंने हमारे लिए ये प्रस्ताव पेश किया है ताकि हम फिर से अस्पताल ले लें। स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएमओ की ओर से इस प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है। केवल जब कुछ गंभीर मामले होंगे तब वही प्रक्रियाएं चलाई जाएंगी। दोनों को लेकर लोगों की भर्ती करने के बारे में भी काम किया जा रहा है, दफ्तर, प्रशासनिक कार्य आदि। इसके लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी। आगालेगा वासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि पढ़े लिखे आगालेगा वासी वहां पर काम कर सकेंगे, अन्य पद भी होंगे। आगालेगा में 2 टापू, उत्तर और दक्षिण, 360 निवासी और उनकी शिकायतें। यही उम्मीद बंधी हुई है कि ये केवल कुछ धुंधली यादें बनकर रह जाएं।
1: और हम आपको बता रहे थे आज सचिव सागर राम गुलाम की 126वीं जयंती के अवसर पर कई जगहों पर उनकी प्रतिमाओं के सामने फूल चढ़ाए गए। हमारी कई टीमों ने उन स्थलों का दौरा किया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
0: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो सचिव सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दिफोज गली स्थित। इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यही

0: रहने लगी और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर विराम गुलाम ने अपनी बहन सुनीता जयपुल के साथ मिलकर शशि सागराम गुलाम मेमोरियल सेंटर फॉर कल्चर को फिर से जनता के लिए खोल दिया। लकड़ी से बने इस ऐतिहासिक घर के 8 कमरे राष्ट्रपिता के रूप में पहचाने जाने वाले शशि सागराम गुलाम के जीवन के एक हिस्से की कहानी बयां करते हैं। यहाँ उनकी तस्वीरें, पुराने अखबारों में प्रकाशित लेख और उनके निजी जीवन से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। इस पुनः उद्घाटन के अवसर पर सबसे पहले शशि सागराम गुलाम की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये परिसर उनके पारिवारिक जीवन की यादों को फिर से जीवंत करता है, उनके चिकित्सीय सफर को सामने लाता है और देश की सेवा के लिए उनके समर्पण की कहानी भी बयां करता है।
1: और हमारी एक टीम प्लेनवेट के मेमोरियल सेंटर में भी गई हुई थी, जहां पर कई महानुभाव एकत्र हुए, जहां पर शशि सागर राम गुलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: एक जाना पहचाना पता, एक ऐतिहासिक घर जो शशि सागर राम गुलाम का है, पोटली में नंबर 87 दिफोज गली स्थित। इस घर में उन्होंने 1936 में अपना मेडिकल क्लिनिक शुरू किया था। बाद में वे यहीं रहने लगे और 1965 तक इसी स्थान पर अपने चिकित्सीय और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कार्य करते रहे।
1: बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां पर एल नीनो की वजह से सूखे मौसम का असर और बढ़ गया है। इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग से जूझ रहा है। नुसंतारा अटलास के अनुमान के अनुसार साल की शुरुआत से अब तक 9 लाख हेक्टर से ज़्यादा जंगल राख हो चुके हैं और इसके और बढ़ने की आशंका है। इस बीच जहरीला धुआं स्थानीय लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है।

0: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
1: पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वो रह रहकर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में कुछ बादल घिरे रहेंगे और बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लाटू पर। बाद में मौसम अच्छा रहेगा। कल दिन के दौरान धीरे धीरे बादल घिरने लगेंगे और कहीं कहीं पर बारिश होगी। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। रात के दौरान इसमें सुधार आने लगेगा। आज रात दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 एवं 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:05 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:04 पर सूर्योदय।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। बाल्मीक रोड सेंट मिशेल बेलेरिविया सेश में तैंतीस साल के सचिव रियाजुल्द के श्री महादेश सौदागर

महादेश सौदागर जो परमुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके भाई मंदेश सौदागर के मकान बाल्मीक रोड सेंट मिशेल बेलियारी वेसेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। रुतबा 54 में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री मोतीलाल गैरप, जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके मकान रुतबा सैकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माँ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। डी फोर इबेन में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वहादम्बा कुपन पैदाशी नाम तिलुवेंगादम और जो विनोदा वारादम्बा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 10:15 बजे उनके मकान D4 एबेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माकाथोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10:15 AM। स्कूल रोड दागतिया में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मानंद ज्योति की मृत्यु हो गई है। वे पूर्व पुलिस अफसर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान स्कूल रोड दागचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: नमस्कार, इस समय 6:25 हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है। इस समय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नई सोच कार्यक्रम, और नई सोच कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं।
1: नई सोच
0: लेकर आगे बढ़ना जिंदगी की रीत होती है। जिंदगी की इस रीत में आप शामिल रहिएगा कि कहीं कुछ बातें हो जो हमें गवारा नहीं हो, तो उन बातों को अलग से सोचने की हम कोशिश करें, ताकि हम जिंदगी के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ते जाएं, जिंदगी का साथ हमेशा अच्छे से निभाते चले जाएं। चलिए जरा हम इस बात पे गौर करते हैं कि जहां इस जहां में हमें प्यार करने के लिए वक्त नहीं मिलता, उस जहां में हम कैसे नफरत कर सकते हैं। सो नफरत को एक तरफ रखिए, बस प्यार ही प्यार बांटते चलिए, प्यार ही प्यार लुटाते चलिए।

बस इस संसार में प्यार बांटना ही अगर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए तो इस हिस्से को यह हिस्सा हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन जाए। बस प्यार बांटते चलिए, यही पैगाम हम भेजते हैं। बस हमारा ही पैगाम नहीं है ये, मन्ना डे जी अपना पैगाम।

अगर आप किसी को उनके होंठ पे मुस्कुराहट दे पाए तो उन होंठों की ये मुस्कुराहट आपको हजारों दुआएं देंगी और इन दुआओं से आपके जीवन में रौनक ही रौनक आएगी। ज़रूर आप औरों को मुस्कुराने के बहाने दे दीजिए और इन बहानों के बदौलत मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट नज़र आएगी इस जहां में।

गाते चलिए मुस्कुराते चलिए और होंठों पे हमेशा मुस्कुराहट लेकर चलते रहिए गुनगुनाने से दिल खुश होता है गुनगुनाकर औरों को भी खुश किया जाता है गुनगुनाकर परिवार में

खुशियाँ और गम जिंदगी में मिलते ही मिलते हैं आपको खुशियाँ मिलती हैं आप उन्हें उनका स्वागत करते हैं गम मिलते हैं उनका भी कीजिए स्वागत और उनको खुशियों में बदलने की कोशिश कीजिएगा अगर गम से घबरा जाना है तो जिंदगी कैसे चलेगी जिंदगी को संभाल के रखने के लिए गमों को भी संभालना पड़ता है

बेशक बातें तो वही हैं, कभी खुशी मिलती है कभी गम मिलते हैं, और इन गमों और खुशियों में कोई हो आपका साथ देने वाला तो जिंदगी खुशगवार जरूर रहती है। इसलिए आप अपनों का साथ न छोड़िएगा, हर गम में आप साथ दीजिएगा, अगर खुशी में देते हैं तो गमों में भी मत छोड़िएगा साथ किसी।

0: दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज शो में आपका हम स्वागत करते हैं। जहां भी होंगे खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और औरों के होठों पे मुस्कुराहट सजाते रहेंगे, ऐसी दुआ हमारी है। दिलों की आवाज शो है ये, आपके दिलों की आवाजें गूंजने वाली है। इसमें आपके दिल में जो भी गाना सुनने की इच्छा है आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। पहुंचाने का जरिया जी हां वही नंबर 5250 6200। कॉल करने का वो नंबर जो आप 70। आपके दिल में जो गाना सुनने की जहां भी होंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और अपने अपनों को भी अपने साथ

भी दे डाली निशुल्क शिक्षा देकर जिन्होंने हर नागरिक की सेहत का ख्याल रखा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके स्वतंत्र कर दिया हर मॉरिशन को देश को आजाद करके उन सर शिवसागर राम गुलाम जी की जयंती तो उत्सव की तरह मनाने योग्य है उन महान व्यक्ति की जय जयकार तो करनी ही करनी है चलिए जरा हम कलाकारों की आवाजों में ये गाना सुनते हैं

आप सुन रहे थे ये गाना विशाल मंगरू जी और अक्षय जुरंज की आवाजों में। और हम तो इस हरियाली, प्रगति, उन्नति, खुशहाली जो हमारे देश को दी है सर शिव सागर राम गुलाम ने, इसके लिए शत शत धन्यवाद अवश्य कहेंगे उनको। इस समय 7:06 हुए हैं और आपके लिए हम बजवाएंगे वही गाने जिनकी फरमाइशें आपने की हैं। तो चलिए दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में आपसे दिल की, आपके दिल से निकली हुई आवाज़ें हम पहुंचाते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए केके की आवाज़ में। और साथिया मूवी का ये गाना हम पेश करते हैं आरती जी की पसंद पर। आरती जी ने मेबग से इस गाने की फरमाइश की है अपनी बहन सुष्मिता के लिए। तो चलिए जरा सुनते हैं हमारी ये पहली फरमाइश।

बिंदिया के चमक और चूड़ी की खनक से थोड़ी सी खुशी तो आ गई होगी आपकी इस पल में, और ये पल खुशियों से ही भरा होता है क्योंकि इस पल में हम आपको वो गाने सुनवाते हैं जो गाने आप सुनना चाह रहे हैं, आपके दिल में जिस गाने की उसको सुनने की इच्छा प्रकट हो रही है। चलिए ज़रा हम ममता मूवी का गाना पेश करते हैं जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में और जिसकी फरमाइश की है सूरज शर्मा सजादा जी ने ट्रियोले से अपने पूरे बिसे सर परिवार के लिए और अपने बेटे निशाल के लिए।

और इस बार राम जानी मूवी का ये बड़ा पॉपुलर सा गाना हम पेश करेंगे. ये गाना खुद ही नारायण अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में सुनिएगा. और ये गीत हम पेश कर रहे हैं सुदेवी जी की पसंद पर. बाकवा से सुदेवी जी ने प्रियोली की दीदी ललिता जी के नाम, कुशल परिवार के नाम, दीदी सुनीता, शुभा, देवी नाम, मालिका के केशनी, कृष्ण और पूरे रामरतन परिवार के नाम किया है ये गाना. चलिए ज़रा ये गाना हम ज़रा गुनगुना लेते हैं, क्योंकि इतना मशहूर सा गाना गुनगुनाए बगैर कैसे रहें भला.

ये गाना है फिल्म सन्नाटा से लिया गया और सन्नाटा तो बस नाम का है, ये मूवी का नाम है। हम ये गाना सुनेंगे बहुत ही जोश और जोश के साथ। और वैसे ये वो गाना है जिसकी फरमाइश बड़ी बड़ी स्वीट से एक मैसेज में दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लविशा और पूरे आपाटू परिवार के लिए मांगा गया है। वैष्णव के पूरे परिवार के नाम करते हैं ये गाना, दागन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लविशा और आपाटू परिवार के लिए।

0: और चलिए जरा इस समय 7:34 हुए हैं और इस वक्त आपके लिए पेश करेंगे वही गाने जो आपकी फरमाइश होगी और आपकी फरमाइश के साथ साथ आपके दिल की आवाज होगी.
1: Continuous music. RM3.
2: दिलों की आवाज, की आवाज,
0: दिलों की आवाज, दिल की आवाज आएगी इस बार पाई से नंदा जी के दिल की आवाज आई है हमारे हम तक और उनके दिल ने कहा है कि वो सुनना चाह रहा है दरिंदा मूवी का गाना. तो नंदा जी को सुनवाते हैं हम दरिंदा मूवी का ये गाना मुकेश की आवाज में उनके पूरे परिवार के लिए, पूरे पुनीता परिवार के लिए, गणेश परिवार के लिए, उनके बेटों के लिए, बहुओं के लिए, उनकी बेटी के लिए और नातियों के लिए.

चलिए जरा हैप्पी बर्थडे कहते हैं हम त्रियोली की निधि को ही. निधि जी का जन्मदिन है आज. बड़ी खुशी खुशी साथ निभा रहे हैं पूरे परिवार के सदस्य, उनके भाई सर्वेश, यशवीर, तावीश, उनके जीजा जी कमलेश, दानशील बहनें हैं पूजा, शैली, रेया, गाथिका, तारिणी, मौसा, मौसी, मामू, मामी और उनके मम्मी पापा की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो. निधि जी आप अपना केक काटिए और केक के साथ साथ मिठास भी बांटिए. आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, आपको बहुत सारी तरक्कियाँ मिले और तरक्की केस की सीढ़ियाँ आप चढ़ती जाएँ, ये दुआ पूरे परिवार की है आपके लिए.

हैप्पी बर्थडे विश किया गया इस गाने के जरिए निधि को जो त्रियोले की रहने वाली है वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू निधि और इस वक्त 7:45 बज रहे हैं और हम पेश करेंगे एक ऐसा गाना जिसे हमने यलगार मूवी से लिया है उदित नारायण सपना मुखर्जी की आवाज़ों का ये गाना सुनना चाह रहे हैं गिरीश हरलोल जी तो चलिए गिरीश जी ये गाना सिर्फ सुनिएगा नहीं गुनगुनाइएगा भी

तो चलिए चलिए जरा हैप्पी बर्थडे कहें हम हरीश जी को. बबासा के हरीश जी मना रही है अपना जन्मदिन और उन्हें शुभकामनाएं मिल रही है ललिता जी की तरफ से. थयोली की ललिता जी ने सुदेवी जी के साथ मिलकर, ज्ञानी जी के साथ मिलकर, छोटे जी, प्रभावती जी और आत्माराम जी के साथ मिलकर हरीश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ भेजी हैं.

सुबेर सैन की आवाज में गाना सुनते हैं और ये गाना है आस का पंछी मूवी से लिया गया इस गाने की फरमाइश संध्या जी ने की है गुडलैंड से बाहुश गुडलैंड से संध्या जी ने ये गाना मांगा है अपने पति विनोद के लिए सेजल रैना और निर्वय के लिए

0: का पंछी।
1: यह है दिलों की आवाज और प्यारे प्यारे से गाने, प्यारे प्यारे से चुने हुए गाने हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इस बार ले

कराए हैं हम दुल्हा बिकता है मूवी का ये गाना दुल्हा बिकता है मूवी का ये गीत आप अनवर की आवाज में सुनिएगा और हमसे इस गाने की फरमाइश की है पालमा का थोबोन के प्रीतम जी ने अपनी बहन स्वास्थ्य के नाम उन्होंने ये गाना किया है मामा माया के नाम और अपनी पत्नी रैना के नाम

0: की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप लोगों के दिलों की आवाज ही सुनाई दे रही है। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये दिलों की आवाजें भी हैं। चलिए जरा हम पूर्णिमा जी के दिल की आवाज सुनते हैं। पूर्णिमा जी ने मांगा है फिल्म अमन का गाना। अमन का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज का है। उन्होंने ये गाना मांगा है प्रेमा सी चरण जी के लिए, जो पैतृपी मऊ की रहने वाली है, उनके बेटे उनकी बेटी के लिए और उनके पति के लिए, उनकी माता जी और उनके पिताजी के लिए। और ये गाना अपनी नातिन परी के नाम कर रही है पूर्णिमा जी, जिनका बर्थडे है आज। और परी दसोई जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, उसके भाई कनिष्क की तरफ से, नानी माँ पूर्णिमा की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू परी।

बस चलिए हम लेकर चलते हैं आपको यहूदी मूवी की ओर और यहूदी मूवी का ये गाना आप सुनिएगा लता मंगेशकर की आवाज में. इसकी फरमाइश करने वाले हैं ताया के रफीक मोहित जी, हमारे सभी सुनने वालों के नाम कर रहे हैं ये गाना.

0: continuous music. RM3.
1: और इस बार चलिए हम शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें सुनते हैं। यादों की कसम मूवी का ये गाना है और इस गाने की फरमाइश विद्या जी ने की है। विद्या जी जो रहती हैं मोका, उन्होंने इस गाने की फरमाइश अपने पिताजी के लिए की है। उनके पिताजी और उनकी माताजी के नाम उन्होंने ये गाना इसलिए किया है क्योंकि उनकी शादी की सालगिरह है। बहुत बहुत मुबारकबाद भेजी है विद्या जी ने अपने माता पिता को। तो चलिए सुने हम शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें।

चलिए जरा हम पेश करते हैं अगला वाला गाना और ये गाना हम पेश कर रहे हैं गिरीश जी की तरफ से गिरीश हरलोल जी की तरफ से उनके उनके फ्रेंड है किरण कौशिक किरण कौशिक जी का बर्थडे है आज वेरी हैप्पी बर्थडे टू किरण जी आपको बहुत सारी विशेस मिल रहे हैं आपके सभी स्कूल मेट्स की तरफ से और किरण कौशिक जी आपके नेफ्यू का भी बर्थडे था 13th को सो आप दोनों को मंगल कामनाएं हम देते हैं बर्थडे के वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू किरण जी और आपके नेफ्यू को भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके पूरे परिवार की तरफ से आपके सभी दोस्तों की तरफ से और गिरीश जी की तरफ से आप हमेशा खुश रहें हमेशा हमेशा तरक्की करें और हमेशा हर पल आपका खुशगवार रहे मुस्कुराहट तो आपके होंठों से कभी निकले ही नहीं कभी जाए ही नहीं वेरी हैप्पी बर्थडे टू किरण जी

दुआओं का ये गुलदस्ता था और इस गुलदस्ते के बाद चलिए जरा हम कश्मीर की सैर कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत, कितनी बेमिसाल है, कितनी रंगीन ये कश्मीर नजर आ रही है। चलिए जरा कश्मीर की खूबसूरती के बारे में सुनते हैं हम बेमिसाल मूवी का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़। और इस आवाज़ में मिली होगी आवाज़ किशोर कुमार जी की, और साथ में इसमें ये गाना आप सुनिएगा सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में भी, यानी कि लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर की आवाज़ें होंगी, आपकी आवाज़ भी मिलेगी इसमें। हमें पता है इसकी फरमाइश करने वाले हैं, इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं साजी जी रसिल से। उन्होंने कनाडा की सरोवर के नाम ये गाना किया है।

और चलते चलते जरा चलते हैं हम पाकिस्तान मूवी के गाने की ओर. लता मंगेशकर की आवाज का ये गीत चलिए जरा हम पोर्टवीज के इब्राहिम जी की पसंद पर सुनते हैं. आपको याद दिला दे समय 8:36 हुए हैं. सो पोर्टवीज के इब्राहिम जी आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं हम.

और इस बार राहत फतेह अली खान की आवाज सुनिएगा, ये है नमस्ते लंदन का गाना, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं सुनैना जी की पसंद पर। प्लान मानियों की सुनैना जी ने ये गाना अपनी सभी सखियों के नाम मांगा है।

इस समय 8:48 हुए हैं, 9 बजे तक हमारा आपका साथ दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के जरिए है, और ऐसे में हम आपके नाम करते हैं इस बार फुलना जायज़ का गाना, और ये गाना तो हमारे श्रोता लोग बहुत पसंद करते हैं, देखा जा रहा है। गुडलैंड्स की वनीसा जी ने सुनना चाहा है ये गाना, और कुमार सानुअल का अग्नि की आवाज़ों का ये गीत वनीसा जी मेविन और गैनीसन के नाम करते हैं। चलिए ज़रा इन सवालों को सुनते हैं, जवाब तो खुद ब खुद आ जाएंगे हुजूर। सवाल बहुत प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा है।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: बस दिलों की आवाज कार्यक्रम का अंतिम गाना हम पेश कर रहे हैं यह होगा सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में ओम शांति ओम मूवी का गाना इस गाने के साथ ही दिलों की आवाज प्रोग्राम यहां समाप्त हो जाएगा आप लोगों का साथ मिला इसके लिए बेहद शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं आपके हम और उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे प्रोग्रामों में इसी तरह भाग लेते रहेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम लगभग 9:03-04 मिनट पर समाप्त हो जाएगा और आप लोगों के लिए हम पेश करेंगे आपका भोजपुरी प्रोग्राम भोजपुरी तड़का और प्रोग्राम में भाग लेने के लिए जरूर फोन कीजिएगा या फिर कॉल कीजिएगा लेकिन इस बार हमारा फोन नंबर बदला हुआ होगा कॉल करने के लिए नंबर होगा 4028085 और मैसेजेस के लिए नंबर होगा 5251705 तो इन्हीं नंबरों पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा भोजपुरी गीतों की फरमाइशों के लिए फिलहाल तो हम आपके लिए ये अंतिम गाना छोड़ी जा चलते हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम का सुनिएगा गुनगुनाइएगा एंजॉय कीजिएगा

0: जमाना आता रहे जमाना जाता रहे पर जो इतिहास में अपना नाम गढ़ा जाते हैं उन्हें हर जमाने में याद किया जाता है सरशिव सागर राम गुलाम जी आजादी देकर शिक्षा निशुल्क देकर और स्वास्थ्य सेवा निशुल्क देकर इस देश की उन्नति में नींव बना गए हैं इस देश की उन्नति के आधार हैं सरशिव सागर राम गुलाम उनको हम अवश्य उनकी जयंती पर नमन करते हैं
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी के स्वाद संगीत के खुशबू सुरेखा संगीत भोजपुरी तड़का
0: भोजपुरी तड़का में तो है स्वागत करते हैं जान नमस्ते सब श्रोतालो के जहां हो बजा खुशी खुशी रहिए जा खुश हंसते मुस्कुराते रहिए जा और ये ऐसे में तो हर स्वागत करते हैं जहां हमनी रेडियो मॉरिशस पर तो हर प्रोग्राम में भोजपुरी तड़का में तो हर पसंद के गाना तो हमने चले भी कर अब जा बस हमने के टेलीफोन कर लिया जा 4028085 पर या फिर अपन मैसेज ही भेज दिया जा 5251700005 पर तो हर पसंद के गाना तो हर तक पहुंचाओ अब जा और ही भोजपुरी तड़का तो हर प्रोग्राम है कर में जोन गाना कुछ बजा सुने के हमने की बताई बजाता ई गनोए से हमने के कार्यक्रम के शोभा बढ़ाओ अब जा हम है सुरे खा तो हर साथ देवा थई चला तोहरा नमस्ते सलाम वालेकुम तोहरा मुरक्कम
2: सलाम वालेकुम
0: विष्णु हरि जी के गावली गाना है

0: भोजपुरी तड़का
1: चला तड़का हमने दबात बाबू वाला गाना संगे लगा ला जा दबात बाबू वाला गाना हमने बजाओ थे जा विश्वानी दुबंजी खातिर अभी कहाँ अपन घरे हुई हन विश्वानी जी तभी रुद्रिक में हवन वकेशन मनावत हमन अपन संगतिया लोग संगे अपन सब सखी लोग के नाम करत हमन गाना और संगे संगे अपन बहन शारदा के नाम सहेली नीला प्रतिभा के नाम शोभा जी और गीता गजाधर जी के नाम चला खूब मस्ती करा विश्वानी जी और खूब अच्छा अच्छा पल बिता के आई हमारी समय कुणाल बाबूलाल की गावाली गाना मंगले हवा तो चला तो हर खातिर बजवाई ला जा

भोजपुरी तड़का। अभी कुछ जलसा करब जा, जलसा लाल बा। अभी तक किशोर खिमिया जी के गाँव वाली गाना हो और जलसा में हुई बजाता ही तक गाना मस्त रही तो हर खातिर। और याद था सुख के रात बाद जे तनी सन्ना आराम आराम करे खुश बताई गाना से बड़ा अच्छा आराम लगेला। सजादा फैमिली खातिर मांग ई गाना बजवावत हैं जहाँ सूरज शर्मा सजादा जी की तरफ से। चला सुनी जा।

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का में गमटवा हुई बेकरी कहे कि जन्मदिन के भी तो माहौल बाना जन्मदिन के शुभकामना गिरीश हरलोल जी देवर था वन अपन संगतिया किरण कौशिक के और किरण कौशिक के नेफ्यू के भी जन्मदिन रहा 13 सितंबर के दोनों जना के गिरीश जी बोला था वन वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और बसंत सुपौल जी के गावाली गाना मंगले हवन चला जन्मदिन के बधाई देवे के ई गाना बड़ा जबरदस्त गाना बा किरण जी के और उनके नेफ्यू के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई

अब चले बड़े बढ़ते बढ़ते चली जा हमनी अगवा के लेके मामा के लेके पापा के लेके बहल गौरी जी के गीत में संगे संगे बहल गौरी जी के एक गाना मंगले हवन हमनी से विजय बेनी पौसा जी विजय बेनी पौसा जी रहे लन शामुनी और गाना मंगले हवन अपन संगत या गणेश जगनारायण जी खातिर और मोताबा के शास्त्री बनुमारी जी खातिर और शामुनी के अपन पूरा बनुमारी परिवार खातिर और ऐसे में हम तो लोग बता देला जा ई गाना जो हमने तो लोग सुनावे थे जा ई बहल गौरी जी कहले हो वन अपन संगत या लोग संगे मिल के यानी कि सुग्रीव गौरी जी भी संगे हो वन ई गाना सुना जा गुनगुनाए ना जा कहाँ गुनगुनाए कि ई गाना तक गमट गमट गाईला जा

चली जा हमने सुना नयन जी के गावल गाना प्रस्तुत करी ला जा शांति जी खाती तेहूस के शांति जी बगल से ही गाना चला हम बनी बजवाए ला जा दागुचे के उनकर मराठी परिवार खातिर अप्पा दागुचे के उनकर भगिना ओम खातिर और उनकर भाई बलराम खातिर सुना नयन की आवाज़

जिंदगी में और बहुत कुछ बा माँ के सेवा करे के अपन परिवार के देखभाल करे के और ये कितना जिम्मेदारी निभाए के और साथ साथ अपन अपन परिवार दोस्त लोग के बीच में हंसी मजाक भी करे के। तो चला अभी हमने माँ के सेवा के बारे में सुनी जा विजय राव जी गए ने हवानी गाना और ये गाना मंगले हवन आत्माराम जी पेले ऐसे और आत्माराम जी गाना पर बहन लोग खातिर मंगले हवन छोटी जी खातिर प्रभावती जी सुदेवी जी और ललिता जी खातिर और बेलिया के अपन पूरा स्नू परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में चला हमने जन्मदिन मनाया ला जा जन्मदिन मनावत है जा आज निर्वेश जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकर पापा कृष्ण उनकरा बहुत आशीर्वाद दिले हवन उनकर मम्मा निशा उनकरा बहुत प्यार और आशीर्वाद दिले हवन और उनकर बहन कृष्णी उनकर पूरा परिवार उनकरा जन्मदिन के मंगल कामना दिले हवन और ललिता जी उनकरा जन्मदिन के बहुत शुभकामना देवत हवन।

संगे संगे ललिता जी सुखलाल मौसी उषा लुकाना छोटी जी प्रभावती जी के नाम करत हवन ई गाना जन्मदिन के ई गाना लीलो माथुर जी के आवाज में सरस सुनी जा।

हर दिन शुभ रही, हर बखत शुभ रही, तो हर खाते रही उम्मीद करत है। और ये अभी चल दादा दादी के कहानी सुनब जा। दादा दादी लोग आल रलन जा बिहार से, आल रलन जा हमने के भोजपुरी बेल्ट से, भोजपुर इलाका से, और आल रलन जा हमने के देश में एगो अच्छा सन जीवन बिताए खातिर। बकिर जब ऐलन जा तो कितना दुख कितना पीड़ा उन लोग के झेले के पड़ल। चलो यही बतिया यही जन पीड़ा के बात बा, पीड़ा के जमाना बा, पीड़ा की जन स्थिति बा, यही सुनब जा हमने गासन सिंगारों जी से। और ये गाना हमने बजाओ तो जा गायत्री जी खातिर, नोवेल फॉन्स से गायत्री जी अपन बेटा अजय खातिर गाना बजवाओ

थवन मायबू से मामी कल्याणी मोहन जी का तीर, फिर लॉन्ग माउंटेन से भाभी शकुंतला जी का तीर, नोवेल फॉन्स से अपन संगतिया गीता बाई का तीर मंगले हवन गायत्री जी गीत। और यही गीत हमने श्रीमती जी खातिर बजवाया था, जय श्रीमती जी मंगले हवन गाना पूरा चंद्रमुनि परिवार खातिर और मोहिस परिवार।

अब चला हमने सुनी जा संतोष महादेव जी के गावली को गाना और संतोष महादेव जी गैले हवन ये गाना हमने के श्रोता लोग पसंद करेला निकरा और यह वाकवा के सुदेवी जी के फरमाइश ये गाना मंगलवान सुदेवी जी दीदी ललिता खातिर कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता दीदी शोभा खातिर देवीना और मलंगा के राम रतन परिवार खातिर हृदय और कुवारू परिवार खातिर असल में हमने सुदेवी जी के पसंद के गाना पजवाओ अब जा विनोद सिवदा जी के गावल गाना चला सुनी जा पीते पीते पीमा और पीते पीते पीमा के बारे में चला सुनी जा हमने कहां प्लांट ले हवन पीते पीते पीमा अपन खितवा में

और जो संतोष महादेव जी के गावल गाना बरमिट में चढ़ल बा गरम गरम पानी ई गाना के हमनी चर्चा कर ली जा गाना अब तहला कैसे न आवा जा और ई गाना मंगले हवन हमनी से अनीता लाल जी जी और ई गाना पर नसपिए के पूरा महादेव परिवार खातिर मदलबे के पूरा इतु और लाल जी परिवार खातिर मंगले हवन अनीता लाल जी अब यही गाना सुनीता जी सुनने खोजत हवन घोंगुप से और अपन बहन विमाला खातिर मांगत हवन कुंगुमा की

श्वेता बाबूलाल के गावल किशोर किमिया के संगे संगे गावली गाना चला सने जा हमने अमृता जी के पसंद पर पीतों के अमृता जी गाना मंगले हवन अपन बेट

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का
1: भोजपुरी तड़का है, संगीत के तड़का और ये भोजपुरी गीत के तड़का, भोजपुरी भाषा के तड़का। जहाँ हो बजा ये गीतवन सुन के तोहरा दिल खुश होवत हो, यही उम्मीद करत हैं जा। और ये अभी सुनब जजन गाना हमने किशोर कुमार रमेशर जी के गावल, ये गाना चला हमने उनकर छुपी छुपी रानी के बारे में सुनब जा चला। ये है दीवानगी से भरल भरल एक गाना, और ये गाना चला हमने सुनी जा वीना जी के पास। इन पर वीना जी गाना मंगले हवन खिफिया जगह पर से।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी के बाद जब छड़ेला त सोना नयन और बसंत सुपौल जी के बीच में जो नाखुश हो रहा एकर बारे में चर्चा तो होते रहला ये चर्चा के बिना तो भोजपुरी संगीत तनी तनी सना फीका फीका सा लगेला चला ये जन चर्चा हर जगह हर कोना में चलेला ये चर्चा के बारे में तो हम जानी ला जा और ये हर हमेशा बात करी ला जा कि सुना नयन और बसंत सुपाल जी के बीच के जन लाखों है ये चौचक है चलो सुनी जा ये लाखों सुना नयन और बसंत सुपाल जी के गावल और ये लाखों हमसे मंगले हवन विजय जी रहे लन गाँव भी और ये गाना अपन दुगो संगतिया खातिर मंगले हवन देव भरत और सुदेश खातिर तो चला सुनी जा इलाकोस

0: फुलवारी जलसा के रात बाहो जलसा के रात बाहो
1: जलसा के रात बाता चला जलसा करी जा और प्रस्तुत करी जा हमने कुणाल हिरलाल की गावल जलसा के रात होला गाना और ये गाना हमने नितिन खातिर बजावत है जा नितिन जी लाफ लोगा से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार के नाम

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: एक कार्यक्रम के शोभा बढ़ाए खातिर आकाश जी मंगले हवन गाना अभिमन्यु हरपाल जी के गावल अयोध्या के राज सीता मांगे अयोध्या के राज आकाश जी बजवाए खुजत हवन मीला वंदना रेखा और रागिनी खातिर।

बचत करे के हमी के जीवन के सबसे अच्छा अनुशासन है और ये अनुशासन के हमेशा अपन जीवन में बरकरार रखे के जाहला रखी ला जा ये अनुशासन अपन जीवन में तो हमें बहुत प्रगति करी ला जा युधिष्ठिर धुलवा के गावल जाना

0: ढेर त्राका नहीं लिया जा, तोशियो बढ़ जाए, जाबेद बढ़ जाए, ढेर सोचिया नहीं।
1: यह धर्मदेव रंगू जी के गावल गाना सोच नहीं तनी सन सोचल कमती करा अपन दिमाग के काफी आराम दिया के सोचा। अभी गाना जो चलाओ थे जब धर्मदेव रंगू जी के गावली अंतिम गाना रही हमने के भोजपुरी तड़का के ये कार्यक्रम के बाद 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम गिनीशाले की आई हन तो हर साथ मिला लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कितना टेलीफोन कर ला जा हमने के कार्यक्रम में भाग ले ला जा हमने के कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना सुनवाई ला जाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
1: हर शाम एक नई कहानी लिखी है और हर पुराना गीत उस कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है तो चलिए आज की शाम आज की रात को यादों के नाम करते हैं और उन्हीं खूबसूरत यादों को दोबारा फिर से जीने के लिए आप तैयार हो जाइए ऑन रेडियो मॉरिशस

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
1: जिंदगी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना चल रही हो पुराने गीत हमें वो दो पल रुक कर जीना सिखा देते हैं इसी सुकून के साथ बने रहे हमारा साथ यूं ही देते रहे ये गीत सिर्फ रेडियो पर नहीं बज रहे हैं ये हर उस दिल में गूंज रहे हैं जहां प्यार यादें और एहसास आज भी जिंदा है और ये है आपका सुनहरे पल

वैसे हर लफ्ज हर धुन और हर आवाज में एक जादू है मेरी जान जो सिर्फ पुराने बॉलीवुड के गीतों में ही मिलता है आज उसी जादू का आनंद लीजिए और आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत खूबसूरत नगमों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रात बहुत हो चुकी है लेकिन फिर भी अगर चाय पीने का इरादा है तो हम तो कहेंगे कि एक कप चाय, ठंडी हवा और रेडियो मॉरिशस पर बजते पुराने गीत जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का असली मजा इसी में है। बिल्कुल जी, अगला नगमा हमारी तरफ से उन तमाम सुनने वालों के नाम जो प्यार से शिद्दत से बैठे हुए हैं और जो हमारा साथ गुनगुना रहे हैं।

सुनहरी पल सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं और आज हम उन्हीं गीतों का खजाना लेकर आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हर गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हो और बस हर इन खूबसूरत इमोशंस को फिर से जी रहे हो। बस यूं ही साथ देते रहे गिनिशा का ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पर।

सेक्स। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।